मित्रों, कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे मित्रों, उतना ही खुश रहेंगे आप।

रहेंगे। जिंदगी में मित्रों, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत है ये सिर्फ दो लोग जानते हैं। दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। आप खुद जानते हो मित्रों, आप इसमें गलत फहमी ना लावे कि हम नहीं जानते। हम ना जानत रहेली खबरदार, सब चीज तो जाने हैं, फिर भी टाल मटोल कर रहे हैं। अपने कर्म को सुधारो मित्रों, कर्म को सुधारो, यही सबसे बड़ी बात है मित्रों, कर्म को सुधारना चाहिए।

मित्रों, भगवान कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। मित्रों, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मित्रों, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है, संत के समान है। मित्रों, ऐसा मनुष्य स्थिर चित और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है, मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।

साथियों, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिसमें भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश होने पर भी वो अपने स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। मित्रों, इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी या भक्त की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। मित्रों, अचल होती है, डगमग नहीं होवत है। जैसे आप अपने जीवन में ऐसे नहीं है, आपके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, अपनी भक्ति करते रहना। मित्रों, भक्ति करते रहना।

प्रेमी भाई बहनों, बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में, यानी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। मित्रों, स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे। वाह वाह, क्या बात है रे, क्या बात है। मित्रों, तो आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे लोग रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे मित्रों, तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे चापलूसी लोगों से बहुत संभल के रहना चाहिए, बहुत चौकस रहना चाहिए मित्रों।

मित्रों, कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते ना, या करते हैं पता नहीं, आप खुद जानो। मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। तो गधे को घोड़ा आप नहीं बनाते हैं ना। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है मित्रों, जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप भी ऐसे हैं, खबरदार। मगर मुझे पता है आप ऐसे नहीं हैं, जानता हूं मैं। भगवान कहते हैं मित्रों, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना। विशेष करके लड़की लड़कियों जवान है ना, मीठी मीठी बातों में फंसा लेंगे, जीवन खराब कर देंगे। खबरदार, पास हो गए हैं तो मीठी मीठी बातों में कभी मत फंसना मित्रों, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते।

आपको ज्यादा चोट पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा। मित्रों, मैं आपको इस भजन के माध्यम से कुछ बतलाना चाहता हूं। जो लोग मंदिर जाते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग जो मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं और कहां कहां ये पूजा स्थल पर जाते भी हैं, तो उन लोगों से हम ये कहना चाहता हूं कि इस भजन को सुनिए। अगर आप इसी श्रेणी में पढ़ते हैं, लागू हैं, तो जरूर सुधर जाइए। और अगर आप इस लाइन में नहीं हैं, तो आगे चलते रहो, चलते रहो।

साथियों, मैं इस भजन के माध्यम से उन लोगों को कुछ बतलाना चाहता हूँ जो इस भजन में बतलाए हुए श्रेणी में पढ़ते हैं। आप बड़े

और कोई कर लेगा, पर अपने कल्याण का काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे भोजन और दवाई खुद को ही लेनी पड़ती है।

पैसे को तिजोरी में बंद करके रखा जा सकता है, पर समय को बंद करके नहीं रखा जा सकता। अपने अनमोल समय को व्यर्थ के कामों में खर्च नहीं करना चाहिए।

संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

एक विशेष सूचना सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। आस्तान दोनों खिस्तस को करीबन 11 बजे एक आउई खत के बारे में हम बातचीत करेंगे श्रीमान राम राम भारत सिंह से। आपको शायद याद होगा जो लोग निकटी फैफ से इफ्तक से पहले आए हैं उन्हें करीबन 25,000 से नवाजा गया है, लेकिन जो निकटी फैफ से इफ्तक के बाद आए हैं उन लोगों के बारे में श्रीमान राम राम भारत सिंह आप सबको बताएंगे जो इस वक्त आओवीर से। तो भूलना मत अपने हित प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से परिवार से कह देना कि दोस्तों को करीबन 11 बजे आओवी खत के बारे में बातचीत किया जाएगा श्रीमान राम राम भारत सिंह के साथ, और उन लोगों के लिए जो नेक तीन फैफन से इफन तक के बाद आओवीर्स हुए हैं और होलंत आए हैं।

भगवान भगवान श्री कृष्ण प्रेम और ज्ञान के देवता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, एक बार फिर स्वीकार कीजिए सेविका शांता के प्यार भरे नमस्कार। और कहती हूँ कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। और बहुत सारे शुभकामनाएं।

कि आप जहाँ भी हो जैसे भी हो जरूर से खुशहाल में होंगे। अपने को और अपना जरूर से ख्याल रखना।

हाँ मन के भीतर तो झांको मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त रहते कदर कर लो, वक्त रहते कदर कर लो, क्योंकि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता।

संगीत में हम जीवन चरित्र सुन रहे हैं कि जब तक कोई साथ हो उसकी मुस्कुराहट को महसूस कर लो, वरना एक दिन सिर्फ यादें रह जाती है और उन्हें छू नहीं सकते आप।

हम तो सुने हैं और ये जरूर कहूंगी मेरे प्यारे सुनने वालों कि अक्सर सोचते हैं कल बात कर लेंगे। मैं भी अक्सर सुनती हूँ कि कल पे हम वादे छोड़ देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कल बात कर लेंगे, कल मना लेंगे, पर कभी कभी वो कल आता ही नहीं। तो जो कल करना है सो आज कर लो कहावत है, जो कल करना है सो आज कर लो, और जो आज करना है तो अभी कर लो। कब ये वक्त

ng Bhagawan. भगवान जब सिखाता है, जब भगवान जब सिखाते हैं, तो सबसे पहले वक्त बदलते हैं। भगवान जब सिखाते हैं, तो सबसे

उसे संभालना भी होता है। इसलिए जो आज तुम्हारे साथ है उसे दिल से अपना लो। एक छोटा सा टेक केयर, एक छोटा सा प्यार, एक आई एम प्राउड ऑफ यू या एक थैंक यू भी किसी के दिल को सुकून दे सकता है।

पर लो वरना भगवान वक्त भी छीन लेते हैं। और वो शख्स भी जिनकी कमी फिर पूरी जिंदगी महसूस होती है, तो वक्त रहते कदर कर लिया करो।

मन के भीतर की यात्रा यहाँ से करा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। सोर खुद फॉर यूसेल्फ सोलांग द

ते सुंदर दिल की दरिया, het leven heeft me langzaam geduld bijgebracht. Het leven heeft me langzaam geduld bijgebracht. Elk probleem heeft me een beetje sterker gemaakt. मन के भीतर की यात्रा प्रोग्राम आपके लिए पेश किया गया इस वक्त के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों, देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है।

ये सुंदर सा नगमा आपके लिए पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, उदित नारायण जी की आवाज सुनिए और फिल्म का नाम हम आपसे बता दें, फिल्म का नाम साथी। साथी फिल्म से निकाल दिया गया है आपके लिए उदित नारायण और देखे तो कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर ली है। लाइव प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। 2005 में ये सुंदर सा गीत पिक्चराइज किया गया है।

अवश्य गाल मुस्कुरालो मेरे प्यारे सुनने वालों और महफिल महफिल अवश्य सजा लो। कहते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम कठिन होता है, लेकिन वही आपको ऊंचाई तक ले जाता है। सफलता

ये दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का नाम। हाँ हाँ, और क्या और क्या, आलका याग्निक जी और देखे तो अभिजीत अभिजीत भट्टाचार्य ने सुना दी ये सुंदर सा गीत जो आपके लिए चुनकर और लाई हूँ सुनाने के लिए प्लेलिस्ट पर। तो बहुत से ऐसे हसीन मधुर गीत आपके लिए सिलेक्ट करके लाई हूँ। हाँ, ये सब गीत तो पहले से तैयारियां करना पड़ता है और काम भी आसान हो जाता है। कहते हैं कि मोती फेरन द बोस कप ऑफर सक्सेस, दोर सेटिंग्स फॉर मोहन, दोर सेटिंग्स फॉर मोहन, सक्सेस वर्ड बहाल दोर दखेने दी सेल्फ इन मोइलके टाइम नीट ऑपगेवन। Kent u zelf daarin? Obstakels als kansen, obstakels als kansen. Hindernissen zijn geen reden om te stoppen. No, no. Hindernissen zijn geen reden om te stoppen, maar een teken om vooruit te gaan. Stille inspanning, werkt in stilte hard, werkt in stilte hard.

उदित नारायण जी की आवाज में, चेहरा तुम्हारा दिल में जिस दिन से उतर गया, हाँ तो ख्याल ही ख्याल आपका आता है, और क्या करें।

वाह, दिल छू जाने वाले ये सुंदर सा गीत रफी जी की आवाज में आपके लिए पेश किया गया है आप ही का फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम आप अवश्य जानना चाहते होंगे।

कहा है कि जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी है, जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। जिंदगी में आप कितनी बार हार, जिंदगी में आप कितने बार हारे या कोई, ये कोई मायने नहीं रखता। जिंदगी में आप कितने बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हाँ, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आप कितने बार हारे हुए ये मायने नहीं रखता। Het maakt niet uit hoe vaak je in het leven verliest. Want je bent geboren om te winnen. Ja, je bent gewoon geboren om te winnen.

Jiko programme Shamil kar liya gaya hai Jagjit Singh ki ye jo zindagi hai ha ha ab ye zindagi jo hai ise humko deal karna chahiye ise inhi mein humo safar karna chahiye kyunki ye vastra nahi hai mere pyare dosto ye vastra nahi hai ki aaj utar do kal pehen lo no कपड़ा हम पल भर में बदल लेते हैं बल्कि ये शरीर इसे हमें लापुकर करके फिर आगे बढ़ना है यानी कि लापू करना इसका मतलब ये है अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उसको ठीक कराने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं स्पेशलिस्ट हैं जो शरीर को चंगा बनाने में हाँ पढ़े हुए हैं तो शरीर को अच्छा करके हम आगे बढ़ते ही जाते हैं तो ये जो जिंदगी है इसे हमें दोनों हाथ से और हर एक पल हंस कर और बिताना चाहिए

यादों का कितना हसीन एहसास है, तेरी यादों का कितना हसीन एहसास है, लगता है जैसे तू हर वक्त मेरे पास है।

में नहीं और पाना किस्मत में नहीं। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं वो लोग किस्मत में नहीं होते। जो हाथ में ना हो, जो हाथ में ना हो उसे मन से भी आज़ाद करने, उसे मन से भी आज़ाद कर देना चाहिए। आपके लिए मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में।

कहता है कल सुख था, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, इतिहास कहता है, इतिहास यानी कि कल जो बीत गया, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है, अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज

मेरे प्यारे सुनने वालों, कुछ अलहदा आपके लिए यहाँ से पेश किया जाता है आज के तारीख में। ओ सुदामा जी ने कृष्ण श्री कृष्ण जी से कहा, सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि दोस्ती का असली मतलब क्या है, दोस्ती का असली मतलब क्या है। तो कृष्ण जी ने हंसकर कहा, हाँ कृष्ण जी के हंसकर कहा, कितनी मुस्कान है भी कृष्ण जी के ना। तो कृष्ण जी ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है ना ए दोस्त, वहाँ दोस्ती कहाँ होती।

सुहानी चांदनी रात, राम नारायण शिवराम जी के आवाज में आपके लिए पेश किया जाता है मेरे दोस्त फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। आपको हम बता दे और क्या बताना चाहती हूँ तो वो ये है।

कहते हैं नसीब, जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है, सब कुछ है फिर भी रोता है, उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है, जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है जो, उसको कहते हैं खुश नसीब। यानी कि नसीब बद नसीब और खुश नसीब। तो आप इसमें से कौन वाला हो कि बद नसीब हो, खुश नसीब हो या नसीब वाला हो।

यादगार ऑर्केस्ट्रा के साज और संगीत में राम नारायण सियू राम जी के आवाज में यहाँ से हमने श्रवण की है। श्री कृष्ण जी के वाणी, श्री कृष्ण जी की वाणी वो ये है कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज आप जो कर रहे हैं ना, आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। और आज जो आपका भाग्य है, आज जो आप

0: को मुकेश चौलाई जी की आवाज में हमने श्रवण की है, माये तेरे चुनरिया। हम जब सफल होते हैं, तो तालियां गूंजती है। हम जब सफल होते हैं तो तालियां गूंजती है, चमकते हैं चेहरे और कैमरे मुस्कुराहटें कैद करते हैं। मगर उसी भीड़ के पीछे एक इंसान खड़ा होता है ना फोटो में आता है, ना मंच पर बुलाया जाता है। बस आंखों में नमी और होंठों में एक ही शब्द मेरा बेटा, उसने नहीं मांगी पहचान, ना ही चाहा सम्मान। उसकी सबसे बड़ी जीत, हमारा एक छोटा सा मुकाम। वो दिन में पसीना बहाता है, और रात में ख्वाब बुनता है। हमें ऊंचाई पर देखने की, हर रोज एक नई कोशिश करता है। जब हमें थकान होती थी, तो वो हमें थाम लेता था। लेकिन खुद कभी थमता नहीं, क्योंकि उसके सामने में, हम होते थे। वो पिता है, ना कुछ कहता है ना जताता है। मगर उसकी, चुप्पी में पूरे ब्रह्मांड जितना प्यार समाया होता है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales.

नारायणी और मुकेश चोलाई के आवाज में चंदन सा बदन फिल्म सरस्वती चंद्रा में ये गीत गाया गया है। मुकेश जी के आवाज में कहते हैं कि जिसका जैसा चरित्र होता है, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों से, शुद्धता होती है विचारों से, आदमी तब पवित्र होता है।

जीना यहाँ मरना यहाँ फिल्म मेरा नाम जोकर से निकाल दिया गया है राम नारायण सियोराम की आवाज में। प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणामय होना, वही प्रेम का वास्तविक अर्थ होता है।

हाँ अवश्य, ये सवाल तो उठता है कि कैसा तेरा संसार, छोटा बड़ा अपना पराया, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबका हो।

वाकई में जिंदगी ख्वाब है। हमको सुना दी एक बार फिर राम नारायण शिवराम यादगार ऑर्केस्ट्रा के साथ। जैसा जैसी मोहब्बत तुम अपने माँ बाप से करोगे, वैसा ही मोहब्बत तुम्हारे औलाद तुमसे करेगी। यही लेन है, यही देन है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, बस समझ समझ का फर्क है।

अहमद अली के निर्देश में। मेरे प्यारे सुनने वालों, बुद्धि भक्ति बुद्धि से होती है, भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है तो कर्म सुधरते हैं।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: एक विशेष सूचना सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। आस्थान दोनरदा 6 अगस्त को करीबन 11 बजे एक आउई खत के बारे में हम बातचीत करेंगे श्रीमान राम राम भारत सिंह से। आपको शायद याद होगा जो लोग निकदी फेफन से इब्तक से पहले आए हैं उन्हें करीबन 25,000 से नवाजा गया है, लेकिन जो निकदी फेफन से इब्तक के बाद आए हैं उन लोगों के बारे में श्रीमान राम राम भारत सिंह आप सबको बताएंगे जो इस वक्त आउवीर से। तो भूलना मत अपने हित प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से परिवार से कह देना कि दोस्तों को करीबन 11 बजे आओवी खत के बारे में बातचीत किया जाएगा श्रीमान राम राम भारत सिंह के साथ, और उन लोगों के लिए जो निकटीन फेफन से इफन तक के बाद आओवीर्स हुए हैं और होलंद आए हैं।
2: मुकेश जी की आवाज़ में

एवरग्रीन एवरग्रीन मुकेश जी की आवाज में दिल ने पुकारा नेकनन सेस्तख में हमने झूठ कहा। नेकनतिन सेफनन सेस्तख में ये सुंदर सा गीत फिल्म दिल ने पुकारा में गाया गया है मुकेश जी की आवाज में।

शामिल तुम होने लगे मेरी उदासी में, मेरी उदासी में खुशियों तुम बनने लगे, हवा से बुझते दिए की तरह।

नशा बन जाता है तो कोई कहता है कि प्यार सजा बन जाता है, पर मेरे प्यारे, प्यार करो अगर सच्चे दिल से, प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो प्यार जीने की बहुत बहुत वजह बन जाता है।

जी मेरे सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत आपके लिए पेश कर दिया गया है। ये अभी हाल ही अपलोड किया गया है, इसलिए आपको अभी मैं नहीं बताऊंगी कि किसका गीत आप सुन रहे हैं। अगर आपको मालूम है तो आप जरूर से बता देना। जिंदगी में दो चीज खास होती है, जिंदगी में दो चीज खास होती है जिसे आप इतने खास होते हैं और यहाँ पर फाउंडेशनी रेडियो से आप जुड़े हैं तो आप वाकई में बहुत खास हैं। इवेंट कौन भी सुंदर। जिंदगी में दो चीज खास होती है, एक वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता, वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता।

आप सभी को एक बार फिर आप सभी को सुप्रभात है। कहते हैं कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज जी हाँ आज कभी जाता नहीं। के लिए हनुमान चालीसा।

जी हाँ जी हाँ, हनुमान चालीसा के साथ यहाँ से आरंभ किया गया है, यानी कि हम सभी यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करने के यहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और दिन की शुरुआत हमेशा मुस्कुराहट के साथ गुजारिश

ये सुंदर सा भजन यहाँ से मिलकर और हमने श्रवण की है। आत्मा प्रकाश और आत्मा के भोजन यहाँ से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से आपको प्राप्त हो रहा है। हमारी ही करनी हमें ही दिखलाता है, हमारी ही करनी हमें ही दिखलाता है जब समय का चक्र घूम कर और आता है। और कहते हैं कि जिसके हो स्वयं भोलेनाथ, जिसके नाथ हो स्वयं भोलेनाथ।

इस भक्ति सागर में यहाँ से मिलकर हम गोटा लगा रहे हैं। ऊर्जा पाने के लिए कैसे कह दूं कि मेरी हर प्रार्थना बेअसर हो गई। जब जब भी रोया मेरे भोलेनाथ को खबर हो गई। अगर आप

हनुमान जी के मैशअप स्पेशल आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से हनुमान है नाम महान, हनुमान है नाम महान, हनुमान करे बेड़ा पार।

का पेड़, नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं। और उज्जैन, उज्जैन नगरी कोई लंदन से कम नहीं, जहाँ बरस रहे हैं मेरे महाकाल का प्यार, यहाँ जहाँ बरस रहे हैं।

दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ए आशा उम्मीद है कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे। जो परिवार में दुख है, यही विनती है, प्रार्थना है कि वो दुख की घड़ी जो

0: नौ के वक्त हमारे श्री पंडित राजकुमार महातम जी उपस्थित रहेगा हमें अपने ही मुखारबिंद से सुंदर सा कथा सुनाने के लिए। उससे पहले हाँ अब एक घंटा के बाद उससे पहले यहाँ से हम विज्ञापन सुन लेते हैं।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार।

अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर। मैं नादान हूँ बाबा, मैं नादान हूँ बाबा, सब कुछ हार

हार कर भी आसमान की ओर देखती हूँ, सब कुछ हार कर भी आसमान की ओर देखती हूँ, उस और इस उम्मीद में कि वहाँ कोई है जो एक रोज़ सब ठीक कर देगा। ये विश्वास है और ये विश्वास होना ही चाहिए। मेरे हंसते हुए चेहरे पर मुझे नाज है जी, मेरे हंसते हुए चेहरे पर मुझे नाज है, भोले से मेरा कल और भोले से मेरी आज है। सारा ब्रह्मांड झुकता है जिसके शरण में, सारा ब्रह्मांड झुकता है जिसके शरण में, मेरा प्रणाम है उन महाकाल के चरण में। फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ये ऊर्जा पाने वाला प्रोग्राम मन की शक्ति वाली प्रोग्राम, तेज बढ़ाने वाली प्रोग्राम, दिन अच्छा शुरुआत करने वाले प्रोग्राम आप

यहाँ से हम सब मिलकर सुने और भक्ति प्राप्त करें, दिन की अच्छी शुरुआत यहाँ से शुरू हुए। इस प्रोग्राम के सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। सोलह मिनट गुजर गया है। 8:00 और आज बुधवार का दिन है, पांचवा तारीख है, 5 अगस्त हो चला है। इस महीना का 5वां दिन है और इस साल का 8वां महीना चल रहा है। 2017

0: To enjoy evergreen melodious songs from
1: इस बार है हम तुम जिसे कहते हैं
2: चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर शिमारू विट
3: ब्रदर है
2: बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

बात तो सही है और भी ना सही है, जो शादी का लड्डू खाए उसको पता है और जो न खाए उसको वो तो पछताए है। एवं कौन उकनीत आलस है पर है तो आप शादीशुदा हो या ना हो दोनों में फर्क है।

ऑनलाइन क्लीनर है सपरस्ता साफ है, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में यहाँ से मिलकर हमने श्रवण की है। हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर है शंकर जय किशन। सुनो सुनो मिस चैटर्जी आपके

सुंदर गीत यहाँ से आपके लिए चलाया जाएगा, जो हमारा सुनने वाला मांग की है, और वो भी फिल्म धूल का पुल से, जो नेकन फेफ तक में पिक्चराइज किया गया है। हम सुनेंगे लता जी के आवाज़ में और महेंद्र कपूर जी के आवाज़ में, ये दोनों मिलकर हमको सुनाएगा। चलते हैं सुनने के लिए ये

0: मेरे प्यारे सुनने वालों, जिनका इंतज़ार था वो आ गया है। तो यहाँ से बहुत प्यार के साथ श्री पंडित राजकुमार महातेन जी को स्वागत कहती हूँ। पंडित जी, आप आकाश में हैं, आपको हार्दिक से स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: जी पंडित जी।
1: हरि ओम महादेवम नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देव सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपितवाम भागम पाणु महासायिक चारुचापम नमामि राम रघुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च स्यूतराय च मुक्षुक स्वरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। ईश्वर को नमस्कार और अत्यंत स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले, जहां तक हमारा आज पहुंचे, आप सभी को जाकर यथा योग मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुंची। खास करके रेडियो फान के जो मालिक हैं, मैं उनकी भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ जो समय प्रदान किया धर्म प्रचार करने के लिए। हम वहाँ अभी कितना लड़ रहे थे, जहाँ प्रसन्नता जी ने रेडियो फान को माध्यम से हमें आप कितने अच्छे ढंग से सेवा कर रहे थे, उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। आकाशवाणी के सुनाले और बुद्ध की तरह भगवान का अनुपम कृपा हुआ ताकि आपके बीच में मैं कुछ ना कुछ धर्म संदेश आप तक पहुंचा सकूं। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, इस पे थोड़ा ध्यान रखना और ये कथा जो हम कह रहा मेरे ऊपर भी बात लागू होते हैं ना। यदि तुम मन ईश्वर से कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा रखकर भगवान से प्रेम करते हो तो वो सच्चा भक्ति नहीं है। अनुराग और प्रेम में अंतर है। संसारिक वस्तु के प्रति जो तुम्हारा मोह है ना, उन्हें प्राप्त करने की जो इच्छा है वो अनुराग है, परंतु जो तुम्हें भगवान से बांधता है वो प्रेम है। हमें भक्ति का सही अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति क्या होती है आकाशवाणी के सुनने वाले? भक्ति इसके अनेक अर्थ हैं। नारद जी ने भक्ति को भज सेवम कहा है, अर्थात भगवान का भजन तथा पवित्र और मन एकग्र करके, मन एकत्रित करके उसकी सेवा यानी मन लगा करके उनके सेवा करना, वो भक्ति है। यही भक्ति है। और गार्ग मुनि क्या ख्याल आकाशवाणी के सुनने वाले? गार्ग मुनि के अनुसार भगवान की महिमा का वर्णन अत्यंत प्रेम से करना और उसमें तन्मय हो जाना भक्ति मार्ग है।

भागवत प्रेम परम, भागवत प्रेम परम हानि लाभ से परे स्थिर तथा सभी परिस्थितियों में समान होना चाहिए। अविप्ति तथा प्रशंसा दोनों से उसी में प्रेम से भगवान का ध्यान करना और उन्हीं के आश्चर्य में पड़े रहना ही सच्चा भक्ति है। हम जाते महाभारत को आकाशवाणी के सुन, पांडव में सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे मार्ग का अनुसरण किया। राजसूय यज्ञ के समय जब पांडव सुखी और आनंदित थे तो धर्मराज निरंतर कृष्ण का स्मरण करते रहे। इस पे ध्यान करना का सोने के सुना लो, जब पांडुआ ने पांच पांडुआ जो विजय प्राप्त किया वहां पर यज्ञ होते, यज्ञ के पश्चात वहां से कुंती माँ प्रसन्न होते हैं, यानी कृष्ण भगवान वहां से प्रसन्न होते हैं, तो कुंती माँ रुदन करने लगा तो कृष्ण भगवान कहे हैं, माँ कुंती माँ क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्योंकि आज पांच पांडव आपके बेटे विजय प्राप्त किया है, रोने का आवश्यकता नहीं है। तो कुंती माँ बहुत अच्छा संदेश हमें आपको दिया है। कुंती में आना कहा कि भगवान से, प्रभु जब हमारे ऊपर दुख था तो सदैव हमेशा आपको ध्यान करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन दुख तो दूर हो गए, सुख आ गए हैं, और सुख में हम आपके भूल जाएंगे। तो आकाशवाणी के सुनला, हम वहां भी मानो सुख में भगवान को भूल जाते, दुख जो आते हैं तो भगवान को याद करते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कुंती माँ के आशीर्वाद दिया कि दुख सुख में सदैव आप याद करेंगे। तो आकाश होने के सुनल, इस पे ध्यान रखना ना सभी को। यहाँ पर फिर बात दोहराता हूँ, सभा में कौरों ने द्रौपदी की लज्जा लूटने का प्रयत्न किया, धर्मराज ने कृष्ण का सुमरण किया। इसी प्रकार जब शत्रुओं से अभिमन्यु घेर करके मार डाला, दुष्ट ने कृष्ण का ध्यान किया। 12 वर्ष वन में व्यतीत करते समय जब फल फूल खाकर पांडव अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, ये दुष्ट निरंतर कृष्ण के ध्यान में मगन रहते थे। महाभारत के युद्ध से विजय प्राप्त कर लौटने समय भी धर्मराज के मन में भगवान कृष्ण का निरंतर सुमरण रहा। ये प्रत्येक घटना है, मानते थे उनका हृदय सागर के समान था, सागर में नाना प्रकार की जीव जंतु उत्पन्न होते रहते हैं, कि कितने उसी सागर में मृत्यु भी हो जाती है, किंतु उसमें रहने वाले प्राणियों को जन्म मृत्यु का सागर पर कोई प्रभाव नहीं। कहने के तात आकाशवाणी के सुन, ये बात है कि धर्मराज दुख या सुख में वे एक भाव सदैव भगवान को ध्यान करते रहा। हम वहां भगवान के पूजा पाठ करते कुछ दुख आ जाते हैं तो भगवान पर हम कम विश्वास करते, देखो हम झूठे भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन दुख सुख में सदैव भगवान को हमें याद करना चाहिए। उसमें दृढ़ विश्वास हो करके उसमें संदेह नहीं रखना चाहिए कि जो हम प्रार्थना करते भगवान हमारा प्रार्थना नहीं सुनते हैं, भगवान हमारा प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं। आकाशवाणी के सुनने वालों, परमात्मा सभी के प्रार्थना स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार धर्माद युधिष्ठिर भी प्रत्येक स्थिति में की भांति शांत रहते थे, सागर के समान ही उनके जीवन में भी अनेक कठिनाई आई और हर्ष विषाद के क्षण देखे, किंतु उन्होंने एक महान की भांति उन सबको सम्मान किया और भाव से भगवान में लवलीन रहे। कनेक्ता दाद फिर द्वारा आकाशवाणी के

उतनी वहां पर पांच पांडव कुपट के इतने दुख आए, लेकिन सदैव भगवान को याद कर विश्वास करके प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि संसार मायामय है। हम आप जानते हैं ये संसार मायामय है, और सदैव धर्म चरण करना चाहिए। कि इस पे ध्यान करना, केवल मंदिर में जाकर पूजा करना और एक नारियल चढ़ाकर फल की आशा करना ये भक्ति नहीं है। अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक व्यक्ति ऐसे भक्ति का सहारा लेते हैं, वे लोग भक्ति को भी एक व्यापार बना लेते हैं, वे ईश्वर से व्यापार करना चाहते हैं। हे परमात्मा, मैं आपको ये भेंट करता हूँ, आप मुझे वो दीजिए। बहुत बड़ी तो आकाशवाणी के सुन लला, हम कुछ भगवान को चढ़ाते हैं ना, कहते प्रभु के स्वीकार करो, हमारा काम पूरा कर दो। परमात्मा ठीक से जानते आपके क्या आवश्यकता है, हमारा कर्म बनते हैं, हमारा धर्म ही बनते हैं। भगवान से, भगवान को हम प्रार्थना करें, भगवान से मैं कुछ नहीं मांगना चाहिए। परमात्मा तो घट घट में समा हुआ सब कुछ जानने वाले हैं, उन्हें पता है मैं क्या कमी है। परमात्मा प्रेम का एक भी मिल जाए तो तुम संसार में कितनी ही वस्तु को विजय प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे ईश्वर प्रेम प्राप्त हो जाए, आकाशवाणी के सुनने वाले भगवान का आशीर्वाद जो हमें वो आपको मिल जाए, तुम भव सागर पार कर सकते हैं। तो आकाशवाणी के सुनने वाले भी कहूंगा, ये बात आप फिर ठीक से जानते हैं, जीवन क्षण भंगुर के है, आज हमें कल नहीं है, जो कल ही करना आज, जो आज इस वक्त। तो आकाशवाणी के सुनने वाले युवाणी द्वारा अपना पौरुषण विराम करने जा रहा हूँ। हरि ओम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्यदु भाग भरे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।

हाँ जी मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ से हम मिलकर सुने श्री पंडित राजकुमार महात्यम जी के मुखारबिन से ये सुंदर सा कथा। पंडित जी को दिल से धन्यवाद किया जाता है कि वो अपना मूल्य वक्त भी निकाल कर और यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से उपस्थित होता है सुंदर सा कथा सुनाने के लिए। हर बुधवार की तरह आज भी उपस्थित था। पंडित जी को हार्दिक से धन्यवाद है। आप एक शुभ दिन आपको भी।

0: के।
1: क्या खूब गीत है और कितने दर्द भरी आवाज में मोहम्मद रफी जी ने सुना दी है। फिल्म का नाम छू मंतर। आज बुरा हाल, आज बुरा कल अच्छा आएगा, आज बुरा तो कल अच्छा आएगा, वक्त ही तो है मेरे दोस्तों बदल ही जाएगा। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरी जीवन कम पर जाएगी, तो पूरी जीवन कम पर जाएगी। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके लिए आप ही का मांगे हुए गीत यहाँ से हम चला रहे हैं फौन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। इसे आप जरूर सुने, दिल थाम के सुने।
2: मैं किसी दिन

0: मैं एक बात पूछूं कि जवाब दोगे?
1: जवाब न मिलने का डर है तो पूछती क्यों?
0: सुनो तो, पूछती हूँ क्या तुमने अपना प्यार भी भेजा?

वाओ वाओ, ये गीत को सुनते ही सभी रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं। फिल्म का नाम शोला और शबनम। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। मोहम्मद रफ़ी जी की मधुर वाणी में ये गीत हम सब मिलकर और श्रवण की है। खुश नसीब है वो जिसने अपने आँच का समझदारी से इस्तेमाल किया। जैसे आप, हाँ आप खुश नसीब है जो आज का दिन जो है वो समझदारी से इस्तेमाल किया और करेंगे, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज जो है ना ये पल जो है ये कभी जाता नहीं। ये आज जो मिला है, ये पल जो मिला है, इसमें हम खुश रहे, इसमें हम अच्छा कार्य करें। मेरे प्यारे सुनने वालों, जो सूरीनाम से सूरीनाम में रहते हैं और सूरीनाम में भी रेडियो के करीब होकर फावन हिंदुस्तानी रेडियो को फॉलो करते हैं, आज वो हमारे हॉलैंड में मेहमान बनकर आए हैं और पूरे परिवार से मिलकर रेडियो को फॉलो करता है। उनके मांगे हुए गीत यहाँ से आपके लिए पेश कर रही हूँ। कोई और नहीं है, वो है सुदेश और शर्मिला खेमाई, जो अभी अभी आजा और आजी बनी हुए है, यानी कि उनका बेटा भी माता और पिता बना हुआ है, विराज खेमाई और अनिशा खेमाई। एक नए शिशु का जो जन्म दिया है। फावन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, खुश नसीबी पेश किया जाता है। और आगे में चलकर ये नए शिशु जो है हमारे आपका नाम भी रोशन करें।

जब भी ये दिल उदास होता है, दिल को छू जाने वाले ये गीत आपके लिए पसंद की है सुदेश खेमाई, जो इस वक्त नीदरलैंड में मेहमान बन के आया है। देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। और इस बार फिर है मोहम्मद रफ़ी जी, दिल की गिरह खोल दो।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी राम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की बात।

और दोस्तों हम तुरंत बढ़ जाते हैं अपना समाचार को लेकर। और समाचार क्या क्या होगा दोस्तों, आप लोग को तो पता है, जॉनी पूरा दुनिया को शेयर कराएंगे और करा कर वापस हम आ जाएंगे। अपना सूरीनाम और नीदरलैंड का भी कुछ खबर आप लोग को हम जरूर आज बताएंगे दोस्तों। 15 बरिस के 15 यारख लड़का भैया जेके अब्बे बाप माई स्कूल पठावे है, सभ्यता पठा बतावे है, सिखावे कि दुनिया क्या है। और 15 बरिस के लड़का सूरीनाम देश में भैया और गैला एगो क्लीनिंग साख है जेके नाम बा कैली फैशन लतूर वेख में भाई और गैला हुआ सले पर भैया, सले पर चोरी करे और कपड़ा चोरी करो, ये लड़का के भविष्य का होगा भाई। 15 यारख केंत मुतिक्षक आंखलग और ओकर भविष्य का हुई रात के गैल है भैया। ऊपर से क्वालिफी जेर दे दिवस्टाल करी से भैया, ना सोचे दुकान में गए और चीज ले के जे भीम चल गए, ना भैया प्रोफेशनल दिवस्टाल करी से और गैल है कपड़ा और स्लेपर चोरी करे भाई। हाँ और बोले है ऐखनार जो रहसा के सी, हाँ बोले शनिचर के 1 तारीख अगस्तस के 10 बजे बोले हम अपन दुकान मोई से बंद कर ली है। सोमवार के सवेरे बोले व्यर्थ है दौर अनुभवा कर फान फास्ट फूड रेस्टोरेंट खबेल मैंने मई दे डीलिंग दैट एयर वॉज इन ब्रोकन। वहाँ पे एगो वक्त रहा फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सवेरे सवेरे के बेल कही बोल तो दुकान तुरान है और अंदर नेमर भैया दाद सही देर फन विंकल ओपन स्टोन और बोले है फरमूद दाद दाद ओफर द ओम हेनिंग से इनके क्लोमन एंड फॉर फॉल्कन्स फिया द सही देर द विंकल इज बिनन खद्रोंगन। जो कंट्रोलर भैले भैया तो बोले टी शर्ट गए ले और वो मेरक अंडर आर्मोर सेना के नॉर्थ फेस एंड बेसिक रकम रकम कॉर्ट ब्रुक सब चोरी हुई गए सिपाही गए और वो फर्स्ट किल इन खुदरे पकड़ान है भैया ऑन द सुकरी से बोले हैगा तेज से पुलिस और वेयर द फर्स्ट किल इन द खुदरे इन बस लाख रोमन एखनार हरकेंद देसे लातर अस एक दोन फन जैन जाग भैया। और 15 बरिस के एक येरेमी एम पकड़ी से ओके और उगे लेगा बोले ई लौंडा एगो लौंडा रा करिया करिया ई बाइक पे लतूर वेक में रही तुन है दूर मन वेट आंखस प्रूक मैंने फरसूक ओम अ लिफ्ट फॉल्कस हेम हाथ दे समान अ ग्रोत जिम्बो तास एंड अ स्वार्थ प्लास्टिक सक में क्लीडिंग स्टुकन बाई सेख। बोले दे फर्दाख्ते फर्क्लार्दे फेर्दा दा से सामन ऑफ द ई-बाइक फर्ट्रोकन मार बे हेड सीन फन अ पुलिसी दे तासन ऑफ द ग्रोन खोईदें एंड वेगरेंदें करिया नाइकर हा 15 बाईस के लुंडा के 3 गो स्लीपर और फन आले से के पकल ली से हमारे जनता। तो आज हमारा सूरीनाम के भविष्य देख ले भैया, 15 यारख यों और शुरू कैसे अभैये से दुकान तूरे के चोरी करे के। तो ये अपन तुकोम से भैया इसी कर

गर्मी गर्म है सूरीनाम देश में। और अभी आप बताएंगे, हम बताएंगे आपको कि सेड्रिक सिम्पसन सैमसन काबुली से जनता बहुत नाराज है। प्रेसिडेंट जेनिफर जिमोन के बोले एक बरिश हुई गई है, बोले अब देशवा में इक्को फर बेहतरीन न आयले। यस ओही के आदमी लोन कपड़ी लोन अब कलाख करे है कि बोले और खराब हो गए भैया संतोखी कर हियरिंग से बोले और ज्यादा खराब हो गए हैं। तो यहाँ जेनिफर जिमोन जो हम लोग के प्रेसिडेंट थे सूरीनाम के, औ बोले हैगा बोले है ओकर कैबिनेट जो है मिनिस्टर इन हर कैबिनेट बोले ऊ मांगेगा अरे शिफलिंग भैया मांगे अरमियन के निकारे। तो एक बरिश हुई गए अब तू जाए निकारे सूरीनाम के गो कानून है भैया जे एक बरिश तू मिनिस्टर बाटे तब तू जिन चुके निकार दी तो तू जिंदगी भर पैसा पइए। बहुत उसके रखेरे में भैया 50-60 गो एक बरिश के बाद में निकारत रहा उस सबके जिंदगी भर पैसा मिलेगा। उ एगो स्मेरख अन हेल फिश ऐसे बोल ले भैया अन पॉलिटिक हैगा कि एक बरिस तो के हम लेला तो अब ओकर बाद में फिर एक मेला धरबे तो फिर एक मेला का धरबे जो ने सब के जिंदगी भर तुसी का फौस पइए खरातस में और जिंदगी भर पइया पैसा पइए। तो एक बारे में संतोखी ब्रेंसवाई के रखे रे मात्रा ई वेतवा निकारे मालूम ना वेतवा निकार पाए रहा कि ना निकार पाए रहा। और यहाँ बतावे हैगा मांगे है reshuffle करे वेलफेयर से जाते मिनिस्टर से इनवार एंड मेयर सौमुतन खबीरन स्टार्ट सो फॉर सूरीनाम फॉर द टेजेस रखेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडा आन कि ओकर रखेरे इस ओवरनाम फॉर यार इस कब्लीकन दैट है हास ऑल मिनिस्टर हील फील कपोट वास एंड दिस खरीपा रेस मोस्ट वर्डन। लेकिन यह बताई गई दोस्तों बोले ये हैव ऑल्टन मेंशन एन एक्स्ट्रा स्टेप या एल्बो फॉर ऑफसेटन इस बात सिमोन्स बतावे है मना बतावे है का जो रिशफल करिए मिनिस्टर वर के निकरी तो पैसों पाई कि ना पाई ओकर बारे में ना लिखी से यहाँ भैया स्टार्स वो बना दे कर दाद रिशफल ऑन द एन कान इवन अंडर द कांस ही फ्रॉम द मिनिस्टर दैट वेर बेहतर टू डू मार द अंडर कान कोर्स दैट हैड लर्न ओ फील हेल फ्रॉम दैट द से बेहतर फिर ऑन दैट वर नो दैट मिनिस्टर ऑन द steunen bolle volke simon zorg en gebrek van decentralisatie in het land. Komende jaar is het jaar waar ik graag wat meer ga werken aan de herstructuring van de overheid systemen. We willen werken naar een raamwet. We willen werken tot het ik maar eens met kan de kawike mevrouw simon over het jahe jebate president moet werken. Nu is de vraag John Adamien Keris of welke de minister gaan ze wel de geld krijgen salaris de hele leven of niet, want als die mensen, het moet zo zijn, als je je werk niet doet, moet je ontslag krijgen en dan moet je ook geen cent krijgen. Ga maar solliciteren voor een ander werk. Zo is de leven er. Het moet niet anders zijn. Wij zijn in Suriname niet zo ontwikkeld. Artemange en de Miloke ego luxe leven dat we op deze manier 1 jaar minister blijven en daarna ontslag geven of een reshuffling en dan word je de hele leven namelijk verzorgd door de belastinggeld van onze bevolking. तो ये बात है हमारे सूरीनाम की जनता। अब देखो यहां पे बतावे है रखेरिंग बोले सिद ए रे पराची फासे बोले अबे हम लोग ठोंक ठाक करेला रखेरिंग वहां में एक बड़ी जोई गएगा रखेरिंग जिमोन के और रिसलांद के एनपीएस के और बोले हम लोग अबे रे परेर करेला भैया तो के चाहे काम करे तो के चाहे रे परेर करे के प्रेसिडेंट जेनिफर जिमोन बोले हैगा बोले हम लोग के खाते को बहुत दाखिंग हैगा अरे जे तू ले ले देसवा में तू जानत रही कौन चीज तू पइए तो बोले 3 तारीख अगस्त के बोली से और बोली से प्रेसिडेंट पलेस में बोली से स्टार्स बोली से गा बोले एक बरिस बोले स्केच से द प्रायोरिटी फॉर द कमिंग पीरियड सिमोन बिफिन द रेगिंग शेख मोमेंटल इन रिपरासी फासे बोले हैगा अब ओके हम लोग स्पाना आना लेके रख रेंगे वहां के बनाएला भैया बोले टूटल फूटल ला तो ये कौन मोदो है भाई। तो ये बात है हमारी जनता सूरीनाम की और हॉलैंड की जनता जो हमारा प्रोग्राम को और सुन
बोले भैया हम जाए तेरी दिल्ली की ओर इंडिया की ओर। अब इंडिया में भैया तू जाने हैं वहां पे अंतविकलिंग बहुत जबर है भैया। जब से नरेंद्र मोदी आयल है और योगी बाबा आयल है देश के बढ़ंती बहुत ज्यादा है। अब बोले दिल्ली में से स्टीफ इन ऑफ इलेक्ट

elektrische voertuigen in strijd tegen luchtvervuiling. Doen etraad hoa hoa he. Bolle u dhoa katin. Bolle ze bankeri. Aure jada elektrische kuchua hoiga. Bolle in een drukwinkel gebied. Jahan Dilli me ba. Hoofdstad van India. Aure bolle hega wahapere. Bolle hega. Vrachtwagens en auto's druk bezig met opladen bij de weinige beschikbare laadstation. Dit beeld symboleert een van de grootste uitdagingen en beloftes van de Dilli's ambitieuze plan om een straatbeeld gratis te vergoeden en beruchte luchtvervuiling aan te pakken. Ik tarik jullie introduceerde Dilli een nieuw beleid dat is gericht in 2027. Bole het jada bole elektrisch gari वहां पर चलेगा और यहां पे बताए गए भैया बोले फ्लेक्सिबल एंड तुखांग लास्ट स्टेशन हुआ रहेगा एक्सपर्ट बना दे कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी मुझ उत्ग्रादे एंड मेयर मुझ इंसेटेन ऑफ हेन्यूबार एनर्जी ओम ऑन द स्टेकन द फ्राफ्ट फॉलोन मेंस तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता आपको हम अपना प्रोग्राम को और आगे को सुनाएंगे भैया नीदरलैंड में बहुत जबर झूरा है जितना आदमी के तैनोइन है सबके ब्रीफी गए लखमीन तक के अब पानी तो के न चाहे तरकारी के सीचे के ओमदाद झूरा बहुत ढेर होई गए है दसवा में हॉलैंड के बांची थे जितना आदमी के तैन हैगा जने रक्रियासी तैन है जो तरकारी अरकारी बेचे है उ सब आदमी के अब पानी न चाहे सीचे के तब सोचो ये पानी ना है तरकारी प्यासे मर जाए भैया ये हु बात है हमारे जनता तो ये बात है हमारे दोस्तों अब देखो जाए अब और क्या हुआ है बोले वी एस एर बंग फॉर मारवेन बोले मारवेन में के डड़ा यहां लिखल भैया मारवेन रीबा के मानचित हुए है जो जिंदगी भर से एवन लंग फ्रांस रह गया फ्रांस कुयाना से और मारवेन तो जाने अल्बिना से बोले हजारन लोग हजारन को इससे लीफंस अन लीफंस अदर बोले जिए हैं वहां पे मछली से जिए भैया हंडल से जिए हैं काम से जिए हैं बोले रिफीर फॉर मेन थिंग्स अन खमीस कापन दी अन वेदर साइडर्स अल जेनरेशन लंग विद एलकार लीवन toch leek de Marwijnen de opgelopen periode vooral een rivier van onzekerheid bolle te zijn geworden. Op bolle tijdens de Kroetu, Stoermans eiland mee, abobke voorzitter Ronnie Brunswijk bolle hega, bolle hego perka protocol hega stemkrikken bare mee, bolle democratisch mag ieder partij een eigen afweken maken. Op bolle heker bare mee, Brissen se, jarenlange se sarnaam of Frankrijk onderhandel kere hega, beter afspraak kreeg gezamenlijk grens ke 2021 mee een protocol bijla onderteken bijla toenmalige regering Brunswijk vice-president ze op een vervolgens consultatie met de grensgemeenschappen op een hege behandeling ke bare mee hamare pyare pyare meetha meetha janta to jaise jaise samachar rahega aapko hum batate rahe ab dekho bhaiya एगो औरत भाई बड़ी चकल्लस करी से हां औरत भैया सिपाही के ओतो लेके भागे सरनाम के भैया सरनाम के बात है और ये बात हुए हैगा भैया लेसुन के रास्ता ओकर नाम कनोफ्लो वेख के बात है हमारे जनता ते एगो रास्ता के नाम है कनोफ्लो बाकी कनोफ्लो तो सिरिलाम में ना बवा है लेकिन रास्ता के नाम है नानी ते एक औरत भैया सवेरे सवेरे सिपाही के ओतो चोराले भैया बैठ कमाग बोले ओतोवा जो रहा अब ओके सब खोजे है तो जाए के पाई से कनोफ्लो वेख में भाए कोनो फ्लो वेक में पाई से बकी बस कारक हो तो हुआ ना रहा सिपाही बोले हेगा बोले फुरते फिर द्री कर एन दे उकर नाम रहा जो लेडिंग फन अखेंट औरत है
Betawi, volgens de politierapport kreeg de bemande politievoertuig onder leiding van Negosi Pahik en Amba Autaar de opdracht assistenten te verlenen nadat het dienstvoertuig van de DNG was weggenomen. Auto wale ke bhag gaya bahut sipahi ek ek khoji se bhaiya lesun mein khame jaye ke paise sipahi surveyed the intensity in het gebied rond de Magenta Kanaalweg en de omliggende zwijgen. Zij wegen aanvankelijk zonder resultaat. Op het Aegeheega ter plaatse werd ook de vrouw aangetroffen die het voertuig zou hebben meegenomen. Zij vertoonde volgens de politie verward gedrag, waarna om extra ondersteuning werd gevraagd. De beloof verward rabeloeke morina moeika matra, bakisi paik otolik to peelbangel he. Bolle omdat de contactsleutel van het dienstvoertuig niet meer aanwezig was, werd besloten de autosleepwagen weg te voeren. Toek ik hier के लेगे मक्कहां से लेगे ये औरतिया ओकर बारे में यहां पर ना बताई से हमारे जनता किसी पाए के गाड़ी लेके सेवन चल गए हैं तो जब मालूम पड़ेगा तो आपको हम जरूर जरूर जरूर जरूर बताएंगे एक भाई और बहन भैया सब कोई रक्षा बंधन माने के दोनों के हाथ में हट कड़ी लगल है हां भैया के हाथ में दीदिया बांधे हैं रक्षा बंधन या भैया और बहनी दोनों के हाथ में सिपाही बानी से हट कड़ी लगाई से भैया हंद बुए लगाई से कारण कि बुई तारीख के भैया ये दोनों जात्रा स्के फॉल पे ना सांदर ये पे के सबन पकड़ ले से दरक्ष भैया दरक्ष टीम इस के पकड़े रहा पकड़ ले से भैया ई दोनों बोले है स्टंट नेट naar het buiten te vertrekken. Dus sap kuj hoi geraha. Ab ohi tu jane last. Pasportwa check karke. Ab tu jayye bahire. Ab bahire chaliye plane me. Ab bole hega ekar bare me. Sipahi vermoed karat raha. Ke dunu verdachten cocaïne bolletjes hadden in gesleg na lollipop. Bolletjes duru lile raha. Skoutu vermoed kale raha. Aur i dunu के नरकोटिका ब्रिगेड पकड़ के ली गए हैं अंडरसुक करी से देखो 52 jarige vermoedelijk cocaïne op een natuurlijke wijze zijn uitgescheiden terwijl de 46 bolletjes heeft uitgescheiden 46 bolletjes op hij wat 52 vermoedelijk cocaïne bolletjes raam. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de man totaal 116 bolletjes zou hebben ingeslikt en de vrouw 91 bij jou. De otra ilile raha bolletjes na Berlin bolletjes. Kokake bolletjes, hey mausi, tu samaj gele. Ham kaha mangila. Kaha mangila jai hamare janta. हम जाएं नीदरलैंड में भैया स्वोले की ओर तो स्वोले के जनता भैया एगो होकर बरूप सबन तेकन कर ले रहा बरूप कर ले रहा स्वोले नारायण बकी सखवा सबन हराएगे भैया ऊपर एगो इंस्प्राक की एगो नवा आजेडसी जिस असील सुकर के खबाव हुआ आएगा तो हुआ के बोनर जो ने स्टार्च हाखन स्वोले के होकर बरूप गयला एगो साख में सबन हार के खमीन तबस्तीर में ओवर इन spraak rond de komst van nieuw asielzoekerscentrum in hun wijk. Gemeente heeft volgens het gerechtshof weliswaar op sommige punten onhandig, maar niet onrechtmatig geopereerd. Februari mee, ik was stichting Leefbaar Staatshagen. Bole ik kort gedenkele reiker waren mee. En bole ik op straffen van dwangs om 10.000 euro per dag. Tjahinga in hoger beroep eiste de stichting dat de gemeente alle voorbereidingen voor de realisatie van het aanzet per direct zou staken. Bole tjahantra bankereke op straffen van de dwangs om van 10.000 per dag. En dat de gemeente een participatieproject. Traject met de omwonenden zou starten. Zwolle vindt
vangt sinds 2023 ongeveer 10 zoovluchtelingen op aan de Meeuwenland in de wijk Kamper Poortrahan. Locatie willen 1 februari bieden we samen. Stem de gemeente in met de komst van de nieuwe AZC in Staatshagen. Daar moet volgend jaar ruimte komen voor de maximaal charso asiel zoekers in Hoasabandariga. तो ये बात है हमारे जनता हम बोली कुछ असील सुकर के बारे में बताइए भैया जबरदस्त आगे लगल है इना दूसर देश में हम लोग के देश में भैया नीदरलैंड में भइल है नॉर्थ लिम्बर्ग तो ऑस्ट्रिम में भइल हैगा नतीर ब्रांत है जहां पे भैया बहुत जबर जंगल में आग लग गए है हां नतीर ब्रांत है हम बताएंगे लुक फोकट है कान ब्रांत फर्दर अपलाइन दैट ब्रिसन ड्यूट नॉक सीकर टू वुड्सडक मेंस हियर लिखले नो De brand breidt zich verder uit richting de oosten. Oro, je maakt in Noord-Limburgse oosten mee. Betaal je 100 hectare via jerge. Dat komt neer op 1 vierkante kilometer. Zo hectare, 1 vierkante kilometer ke baantje te weten. Burgemeester Jonega uit de Haag, Jonega gemeente Van Rijke. Bolle hega, ze van Joor Torsel Boetawe. Gelukkig is er nog steeds geen materiële schade in de vorm van objecten of persoonlijk leed, zegt hij. Brandlucht zelf de ruiken in Friesland met zijn Make hoe ze ke, Jon Agia he. Friesland met zelf Admike, Utra Dulik, Hawa Geil he, Dumake. Obolle de brand brak maandag aan het begin middag. Er is toen een Nederlandse alert verstuurd vanwege de rook. Opbollegen vanuit onder de meer Friesland, Overijssel, Gelderland meer. Melding bij de brandlucht kebare mee. Toen kebare mee, ja, 100 hectare. Agi se janiki hamloke natuur brand bhail hai. Aur wo hai Limburg mein. वेनेजुएला के भैया ने सुरीनाम पैकेट पठाई से हां ह्यूमिटेर हिल वेनेजुएला के पठाई से और वो है हम लोग के सुरीनाम पठाई से और फोटो बने एक से एक भैया पाकी में सब सरनाम के फोटो बनावल है और प्लेन लगे थरल है कि इतना पैकेट हम लोग पठाईला वेनेजुएला में भैया हेल्प खुदरन और बोले द हेल्प अक्सी मांग देर सुरीनाम से अंडरस्टैंडिंग ऑन द बफ्रेंड लैंड बोले हैगा फरवुस्तंदा आरबी जेंग हुआ भाई ले और बोले हजार को फुल फुटसर पकेट पटाई से और एक पकेट 10 किलो और बोले हैगा ओमा है 52 टन रईस हैगा दो कंटेनर भरल है फर्स्केप दाना फॉलोक फिया से फ्रांग अनफिलेंड सेंडिंग फॉर 9 टन तो एकर बारे में भैया सोशल मीडिया पे आदमी लोन बड़ी बड़ी नाराजगी दिखाई से कि हम लोग के देश के अपरे हेल्प काम है और तू वेनेजुएला के पठावे हैं बाकी हमारे जनता सुरीनाम के वो मु तो ओक अकेर चल ले रे ओम आंध्र लंद ओक तो स्टेन ना खाली अपरे के स्टेन हां जब देखो तो फैलाए रहियो तो हमें ई दे तो हमें ऊ दे तो ई कर तो ऊ कर जब दूसर देश में तो बुरलांड में प्रॉब्लम है ना मुझे ओ कर हेल्प आज द मोकलकाइट इज नेचुरली हम लोग के जनता के हुआ पर पैकेट के काम बा मैं मुझे ओक अंदर में से देखें हुद दिंग सेन व अब सुरीनाम में भी पैकेट बहुत ही स्पॉस हुए है तो हम लोग कभी ना जाए लो कर बारे में बोले कि पैकेट तो ना पठाओ दोस्तों एक 52 यार के आदमी भैया सिपाही के मारी से बदराई करी से भैया में द दूध और इचियो भाई एगो आरे दिंग लगे भाई ले हमारे जनता एगो 52 यार के सिपाही पुलिस फन सेंट्रम शहर के बांचित है परमारी बहु के बांचित है और बोले हैगा तुरतोना लंत में बोले ई सेंदीप ई इंसिडेंट हुआ भैल है जहां पे यू को हामा इन द बीट थे वार पुलिसी अखंड बोले बेशक रहा अफांदल करके को अरेस्टिंग के बारे में उतरे में बोले फलूफ के बमुई दे फरदाख्त बमुई करी से बोले हर लहालक में द वर्कसम ही दे फन पुलिसी अब बोले ओकर बेटवा फॉर और साख द फन अरेस्टिंग सेन खवीस बेटा हुआ जो रहा वही फॉर और साख कर ले रहा अब बपुआ गैला बमुई करे सिपहियन के कितलोपन काम ना मुई करे हैं
ondanks meerdere bevelen om afstand te nemen van de politie haar werk te laten doen, bleef de man die agressief intimiderende opstellen door zijn gedrag voelde benadelen aan de aanrijding zich bedreigd en werd de afhangende handeling van een verkeersongeval ernstig gestoord, mensen. Oro is hier bij jou, hey, als je kijkt naar een ding bij la, oké, jij kijkt zo toe bedreigd krijgen. Sipahilon bhaiya aur upar se adamiya sipahiyan ke bole hai maine dood hebben bedreigd en volgens in het gezicht hebben geslagen skooton ke marbo kari se sipahi log ke bhaiya chot lag gaye hai aur bole hai tab ek pakad ke aur le aaye ke ban kari se uitoefenen van de politietaak. De man werd door de politie aangehouden, overgebracht. De up to jou, sipahi ke ban kari toke pakadke. Kaida toke na bhaiya arreding kare. Laat de politie maar hun werk doen. Ondanks Surinaamse politie een hele slechte naam is, zijn er heel veel politieagenten die goed zijn job doen, mensen. En laat die mensen hun werk ook goed doen. Zo gaat het. En het kan niet anders. Abhaiya deko tamasa. Ego dukaan in Suriname desh mein bhaiya jahan pe murghi bika hai na skip okar naam ba aur ye hai sahar paramari bo ke banchit hai choran ghusal hai dukaan mein mausi aur na gala murghi ke tangdi chori kare ha ye sab gai lakh kalai se nikare aur kalai se nikar ke bhaiya ab ohi jaat raha bas utre mein sipahi pahunch rahe dada मैया दैया लेके कलेज पलेज बिक के चोर भागल भैया अब कलेज वाल निकाल ले रहा दुकानिया में से बोले ले के भगल है मसीपाही भैया दौराई के सब के पकड़ ली से तो अपी चोरवन हाथों से गैल लतवो से गैल मतलब हाथ से कलेज छूट गए और लात अब सिपाही के खाइए तो ये बात है हमारा सूरीनाम के हमारे जनता दोनों के सिपाही पकड़ के और ले गए है बोले अब चल तू गाना गाओ उमा नांगा मांग गयो और उमा नांगा मांग ना गयो तो मुर्गी के गोश ना पियो खाई के जहल के बाद चित है हमारे प्यारे प्यारे जनता तो और आगे को अपना प्रोग्राम को हम बढ़ाते हैं सुनाते हैं एक गीत आप लोग को हम सुना देते हैं उसके बाद हम तुरंत आ जाएंगे आपके पास हमारे सूरीनाम की हॉलैंड के और जनता आपको कौन गीत हम सुनाई बहुत खूबसूरत है ये गीत

हर को और यहाँ बताए गए भैया सूरीनाम देश में बड़ा गर्मी भैया 40 खराद हो गए है गर्मी हेत तो और फिर तक खराद इन सूरीनाम स्टीफ ऑनवेयर्स बैयन ऑपकोम्स इन सूरीनाम जबर पानी बरसी लेकिन बहुत गर्मी है तो जे जे सूरीनाम को जाना भैया आप लोग को मालूम चाहिए कि क्या बात है ये 3 तारीख ऑगस्टस के बातचीत है बोले है का माकर में द्रकन वारवेयर को फॉलो दो रस तेर के तू नहीं मतलब काउंस ऑफ रीकन एंड ऑनवेयर्स ऑनवेयर बैयन बेनलांत में भैया जबर पानी बरसी लेकिन 40 खराद गर्म है यहाँ बतावे सवेरे सवेरे खरोतन दिल झूर रही और बोले संझा कैसे बोले सेफ ने डर तक तो फिर तक खराद सूरीनाम में टेम्परेचर हैगा और बोले हैगा मिनिमम टेम्परेचर 20 तक रहेगा तो रात के साथ रात हुई भैया और बताए गए हैगा फॉल्क का बीच फरवक्तिंग गल्फ फ्राई वेल डिस्ट्रिक्ट इन काउंस ऑफ द ऑनवेस बैन इन परमाणु बेवानी का लिखन टेम्परेचर ओवरडाग तुशन 24-32 ग्राद कोरोना ने केरीसी पलविनी क्विक ऑफ तो 33 ग्राद में से तो आप लोग को ना डरवाएला बताएला गर्मिया के सब कोई तिरक बोली बाप रे बाप हम वो हफ्ता उड़े के कैसे रहबे हम बोले कैसे रहबे हमारे को लिखा कल गया है नाम नहीं लेगे कौन तो उसको तो पता चल गया होगा कि कैसे है चिजवा तो ये बात है हमारे जनता गर्म जो है गर्म जो कितने लोग को अच्छा लगे भैया कितने लोग को तो बोले हमारा मान के गर्मिया ना में ठंडवा सहाइया है बोले गर्मुआ ना सहा है हमार बात वही भैया कारण की दोस्तों ठंडा जो है तो ठंडा है तो उससे आप अपने कपड़ा जो है पहर कर अपना देही को गर्म कर सकते हैं जैसे जैसे ठंडा यहाँ है जब बहुत विंटर है भैया तो यानी कि मोटा यास पहरो भीतर में टी शर्ट पहरो फिर तुराई पहरो और जब और गर्मी है तो टी शर्ट ना पहरो यास ना पहरो तो फिर ऐसे लेकिन जो गर्म है भैया तो लास्ट जो ना बिना कपड़ा के चलिए तब वो गर्म हुआ लगेगा 40 खरीदवा दोस्त दात इसमें से हम जाए हैं एक 13 बरिस लड़की की और 13 बरिस के एक लड़की सूरीनाम के भैया लंदन ओके दुई दुई को ले गए है नानी ना गए लूस एंड मामा पढ़ावे नानी ले गए ओके पेंशन में भैया सूरीनाम में उजाने पर्दा वाला घरवा बड़ा ढेर है तो खोरदेनवा घी दिया भीतर में वो तो लगल नाटक खेला है भीतर कमरा में धना धन खेला है तो सूरीनाम में ये पेंशनवन चारों बगल है भैया और लिखल है बोले अपार्टमेंट दान जाइयो सोची हम गली फकलांसी से जाइयो अपार्टमेंट वा हिर कले जहाँ कहाँ क्यों खरदेन है हुआ ना जाइयो तो ये 13 बरिस के लड़की के शुक्रवार से ऊपर से स्कूल से एक 17 और 20 बरिस के लंदन एक ले के गए है मोंगो के पेंशन में भैया वो है उस सूरीनाम में तो मोंगो में ले गए भैया फरनोमन वार्ड कि ओकर माई गैल सिपाही में नालिश करी से कि ओकर बिटिया घरे ना आइल है और बोले तेज से ऑन द शू ब्लेक दैट इन मेच लातर सेल्फ तो स्क्वाम बोले ओकर माई जो ओके कॉन्फ्रेंस तेर कर कि तू कहाँ रह ले तो लड़कियाँ बोले हम दुई गो लंदन के संगे गरी पेंशन में है स्वेरक बनावे नानी तो बोले द मुदर दे अनखिफ्त और वही रोज जाए कि दोनों लंदन के सिपाही पकड़ी से और दोनों के पकड़ के बोले है मेंदर यार रख रहा है एगो अब ही दोनों के पकड़ के लेके अब बन करी से तो ये बात है भैया 13 बरिस के लड़की के और स्कूल के लंदन ले गए है और पेंशन में भैया मेंदर यार रख ना है स्वेरक बनावे स्कूल के भैया दूसर है स्वेरक गैला बनावे तो ये बात है हमारे यारो हमारे जनता भैया हम यहाँ देखिला संदराई के रईसखर्स जो बा बेना 2 किलो कोकेन लेके हबड़ा होत रहा हाँ 2 किलो एगो फिलन देर तक यार के अदवी सनिचर के बात है 2 किलो कोका लेके जात रहा भैया बैतलान
और एक भी दृक्ष तीन पकड़ ले अरे ये गो का पकड़ ले भैया दस गो हबड़ा हो जा है तो जो न पकड़ा वही लिखा है अब जो ना पकड़ा वो थोड़ो लिखा है और ये धल ले रहा अपन रईस कॉफर में भाए रईस कॉफर में धल ले रहा नेहती होंदत अख्तन देर तक राम धल ले 2 किलो और बोले एक नरकोटिका नरकोटिका ब्रिखा दे लेगे और पकड़ के ना तू लग बन करेगा जब तू ऐसा चीज करिए तो सूरीनाम में दृक्ष वक्त युवा फिर शुरू हुई गए भाई बोले चश्वाला पे आप लोग को हम पढ़ के बताए न और यहाँ पे और कुछ बताए गए है कि अब कॉफर बाख में भी लेके और जा है हबड़ा हुए है हमारी जनता ये बातचीत है। तो दोस्तों चोरी भइल भैया हाँ खवापंत रूफर्स भैया एगो माकन फोर्थ रैप्टर एगो ओतो के नाम बसरी नाम में औ है फोर्थ रैप्टर ओकर नाम बा हाँ सिरादन एंड फेव तक दैसन एस आर दे मारिस ओतो वो चोराई से और 50,000 कहाँ है हमारा है? हरीश मनोरथ मिनिस्टर फाइनेंशियल पुलिस बोले देशवा रिश्ता कोई गे चोरी ओरी ना होवे बोले बहुत कमती बले दे रे भैया दिन दोपहरे हुआ बालकोन में कोई झलवा झोले और ओकर जे नका बोले हेगा सोना के केती फेती ले के भग या अभी यहाँ देखो एगो करिया करिया खरीस फोर्थ रैप्टर रहा और ओकर हाउस कैटिंग 3 अंगूठी और 2 गो कॉन्टैक्ट लो तरफ अंदर फुटते हैं 2 गो मोबाइल और 50,000 एस आर दे लेके और लुटेरा लेके पेल भागल भैया और बोलेगा बना दिल दे रीडन वे रिक्टिंग voertuig is weggereden en is vooralsnog nog bekend. Op het eigen nieuwe grondje sipahi ik er waren mee. Khoj bin kare hai jor tor se. Ab dekho mile hai ki na. Eerste hulp ke baad bhaiya blijf 24 uur open tijdens uitbreiding en renovatie. Te saban aanzet joan hai academy ziekenhuis. Bole hai ga saban renoveer kariga. Ma bole chahe renoveer kariga. Ziekenhuis wa wel 24 uur bolehega bareik bar rahega to hum boli aap log ko hum batai de ki Suriname ki janta na ghabdiyo kuch rahi to aap log ne kar bare mein ek ko bunna chinta kare kaam ba aise to lo jai sake chahe reno fasi hue hai lekin aap ko wahan pe bahandle yani ki milega to ye baat hai dosto hamare yaro प्यारे प्यारे जनता स्टार न्यूज बतावे भैया बोले कैनेडी वेख में अतवार के भैया जबरदस्त कंट्रोल भइल है और बोले उतरे में एगो ब्रोफिसर जाए के भड़ भड़ भड़ भड़ कौतुक ऊपर चढ़ा दे इसे भाई नहीं को रेमोना कमात्रा कि अब सतलक चढ़ा इसे महिया लिखल अब सतलक सिपाही ऊपर चढ़ा दे इसे सिपहिया के स्टॉप टेकन दे इसे ब्रोफिसर ना रुकल जाए किसी पहिए के पेल दी से रानी फर के साथ आफे एम परकेट वाख बोले हेगा सिपहिया बोले अखेर ऑफ दैट मोमेंट रहा उसने लहिस कंट्रोल करत रहा ब्रोफिस के और बोले वेखर कर ले रहा स्टॉप करे के और जाए के को रूपड़े चढ़ा दी से स्नेल है इस मीत अपराध ने दा तेज कंट्रोल वेर खबर राख्त ओक बेस्कादक मेंस है इस ओवर गब्राख ना दे पुलिस ब्यूरो अब देखो ओकर संगे का होवे का ना होवे जैसी पाही तो के रुकाई भैया तो के चाहिए रुक जाए के तो ये बात है हमारे जनता आओ देखो सब बोले है हमारा सिमोंस गैल है इंग्लैंड तो बोले गैल पैसा थोड़ो लेनी करे और एक बारे में गया दिन बोले रे बोले खोल कर थोड़ो गैला कर्जा लेवे वहां जब प्रेसिडेंट गोड़ निकारे देशो आते सब के धुक धुके कपते रहे कि कहीं जाए के हुकर रहे तो मैं कर्जा ना लेवे है तो सिमोंस या बोले खीर लेनी ऑफ कोर्स उतर बे बैंक ऑफ अमेरिका तो इतना आदमी ना विश्वास करे अपन प्रेसिडेंट के जेनिफर सिमोंस मार के बोले ऑन कैन करे है कि वो लंदन गए लहा बोले अ लीनिंग हिफ ऑफ कसलूट बे द बैंक ऑफ अमेरिका फॉर स्टार्ट सो वार एंड द गस्प्रेक आइसोलेटन बदल ओम स्टार्स के इजी से पार्टनरशिप ऑफ द बोर इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल डेस्क ने खाना सुरीनाम ते हाले इन आलोब नार द फॉरवर्ड ओली इनकम्स ते बोले हम कर्जा ना ले ली है और ऐसे ऐसे बात
है हमारे प्यारे प्यारे जनता न्यू अखरोन के सिपाही लो भैया और बोले है मेल्फिस पिनास घर घर घूमे है और जनता से वहां बातचीत करेगा कि तुलन कौन ची मांगे है यहाँ पे जनता से मांगे कौन तक करे इंस्पेक्टर लोड और वहां जनता कितना बोले बोले यहाँ पे हंग योंग दुकान लगे बोले बहुत ढेर है वहां दुकानिया लगे खड़ा हो के दारू पिए भैया दारू पिए है और अंड बंड फिस फास भी करे जा हम लोग और जात जाए दुकानिया में और बोलेगा ओकर बारे में बोले तू लोग कुछ कर और चोरी चपाटी हमारे देश में इस तपलास पे दोस्तों का हम बोली बोली जो नहीं खतीफ बतिया हम नहीं खतीफ ना बतियाला हम वही बतियाला जैसे तोरिया है ऐसे बतिया है ना हमार नानी ऐसे बतिया है और दूसर बात ना है हमारे जनता तो ये सब बात है सूरीनाम देश के हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम के जनता एक गीत हम आप लोग को सुनाएंगे उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को धीरे धीरे खत्म करेंगे और वो गीत क्या है आप खुद ही सुनिए

बस दोस्तों इसी गीत से एक दो समाचार आपको हम सुनाएंगे, उसके बाद में अपना प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे। डिसन कोर्टन न्यूज़मैन से दी ओली सी कम टू वी। अब देखो भैया, एगो मलाई है, ओकर नाम बा पावी रो रे जो सलाम से फॉलो कु से दीप्स काम और फोर स्मेर रख बेनन स्टार। भैया बोले गंधा है देसवा, पर हमारी बो गंधा है। हुए के पार्लियामेंटारी बोले पावी रे जो, बोले जनता के चाहे हुआ पे बहुत शर्म के मारे में डूब मरे के। हिंदुस्तानी में सब बोले ना डूब मरे के चाहेगा, तो पावारे जो बोले भैया बोले सलाम के बेनलान बोले स्मे रखेगा। उसके बाद में साथ साथ हम चलते हैं हमारे जनता स्लेमी स्टाफ वेर एट आत्विन तक खबलाई फन प्रात तो में ख्राफ और मी मुर्गी पोसे है एक बदराइफे और बहुत नहीं खाते फिताई बतिया रखे रिंग के बारे में ओम दा देशुआ नामोई चले। साथ साथ भैया एगो इने सीफ तक यार के आदमी के लाइक मिले ला आफू बाका वैख में भाई डाम पे मिलल है। साथ साथ हमारे जनता फ्रांकराइक के अम्बासाडर जो नहीं सूरीनाम बोलेगा फ्रेंस अकॉर्ड के बारे में चाहे खुशप्रेक करे तुरंत जानो है सेड्रिक सिमोंस जो रहा और वो बोले रहा बोले वे वेले खेन हेन खेन फ्रावन आज प्रेसिडेंट में लेकर बारे में जितना एनडीपी के औरत रहा सूरीनाम में और बदल करेला देना में सब निकल के डाम पे खड़ा हो गए। बोले है बोले कैसे तू बोल सके गो औरत कहना चाहे प्रेसिडेंट हुए के तो सिमोंस यानी कि सैमसन बोले सेड्रिक सैमसन बोले है बोले एक क्वार्टर के इंटरव्यू जो हम कली बोले पूरा सुन तो लो खाली एक मिनट हुआ वाला सुने बोले हम ना बोले कि औरत के नाम आखे करे के बोले औरत लोन हमारे के क्लाक करेगा कि एगो औरत प्रेसिडेंट आइले बाकी तब वो कुछ ना कर पावे है। बोले ओकर बारे में बोलली बाटी कि औरत प्रेसिडेंट हैगा चाहे ये है मां वो आए के फ्रंट ओर ले खाई दे ना में ना देवे बोले ओकर बारे में बोलली है और एकर बारे में इंग्रिड बाउटर्स जो ने बाउटर्स का औरत बोले हैगा बोले बोलेगा स्क्रू ले लेकर बोले खाली चिल्ला है सैमसन तो सैमसन इंग्रिड के बोले बाउटर्स के बोले है बोले पहले इंग्रिड बाउटर्स के चाहेगा जितना ना बस्तांद औरत है उसे माफी मांगे के जोन ओकर आदमी जोन है और फुटल भाषा में बोले भातार जोन ओकर है बाउटर्स जोन मर गए है बोले ओकर बोले चाहे इंग्रिड के ना बस्तांद के या औरत लोग के चाहेंगे फॉर ऑस्कुलिंग करे के बोले हम नकर फॉर ऑनस्कुलिंग ला द फ्राउ फन बाउटर्स इज फर्स्कोंडिक फॉर ऑनस्कुलिंग अनबीर फॉर द नाबस्तांड जेकर बाउटर्स आदमी लोग के माढ़ाड़ी से दोस्तों जबरदस्त आगी लगल है और ये हैगा वोनिंग ब्रान ऑन द मोन सो की वेख में सूरीनाम फॉरलोर द अफकोलो पर फिर तक यार होंदे 66 हेक्टेयर जंगल दोस्तों। तो यहां तक था हमारा देश और विदेश के समाचार जो आप लोग हमारे जॉनी नंबर वन के जरिए सुनाए हैं। नीदरलैंड के आखिरी भैया एगो आदमी माउंटेन बाइक चलावत रहा और नीदरलैंड में एगो वॉल्फ देखी भैया और वॉल्फ के देही में एक को बार ना रहा भाई है सीखते रहा आपल दोरन के बारे में है तो आप लोग को हम बता देते हैं। यहां से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करने का आए हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम है जॉनी नंबर वन। राम राम नमस्कार प्यार भरी राम सत श्री अकाल।

और तेरे चेहरे में, तेरे चेहरे में क्या है दोस्तों, और तेरे चेहरे में वो जादू है, और वो जादू है दोस्तों कि तेरे चेहरे दिखते दिखते और जैसे कोई डोड़ तताई घिजाया है वैसे हम औतो माथी स्टोरे अगर हम घींच कर चला आते हैं तो वो चेहरा में क्या जादू है दोस्तों कि बिना किसी मुसीबत से और जाकर और खींचा जा जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं आपकी आ जाने से क्या होता है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम दोस्तों, और आपकी आ जाने से क्या हो जाता है, मोहम्मद अजीज साधना सरगम का गाया हुआ ये सॉन्ग है, फिल्म के नाम है खुद घर से, आओ सुना जाए। इसमें गोविंदा काम किए हैं हमारे दोस्तों।

0: FOMO
1: और आपकी आ जाने से क्या क्या हो जाता है। फिल्म के नाम है खुद गर्ज का, ये जोंग है हमारे

ते यारो, और उसके बाद तो हम प्यार भरी गीतों का प्रोग्राम लेकर और आगे को चलते हैं कि यहाँ पर बताएंगे जाने क्यों लोग, क्या आपको मालूम है कि लोग क्यों मोहब्बत करते हैं? अगर जब मालूम होगा तो आप लोग हमें बता सकते हैं तार करके। और हमारा सीडियो नंबर है 07-3622-077। अगर ये मोहब्बत क्यों लोग करते हैं और क्या आपको भी मोहब्बत हो गया है? अगर ये हो गया हो और नहीं होना है तो बताना। फिल्म के नाम है महबूब की मेहनी नाइटिंगेल, लता मंगेशकर का ये गाया हुआ सॉन्ग है।

और जाने जाने क्यों लोग मोहब्बतें और किया करते हैं। और आपको अगर ये मालूम होगा कि किस लिए लोग मोहब्बत करते हैं तो हमें आप लोग बतला सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं ये है यानी कि लता जी इस गीत को गाए, फिल्म के नाम है महबूब का मेहंदी। महबूब का मेहंदी नाइटिंगेल लता जी का गाया हुआ सॉन्ग है। उसके बाद हम एक बार फिर चलते हैं फिल्म धर्मात्मा की ओर। आओ सुना जाए।

और क्या तुमने भी किसी से प्यार किया है? और अगर ये प्यार किया होगा तो हमें आप लोगों ने जरूर बताना कि कौन सा प्यार आपने किया है हमारे यारों, और अगर जो किया है तो हमें जरूर बताना। उसके बाद हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर कि अगर ये आपको दीवांगनी होता है तो दीवांगनी कब होता है? जब बहुत बहुत मोहब्बत हो जाता है। फिल्म के नाम है दीवाना, दीवाना फिल्म का नाम है, नीखन दिन तुई नीखन तक का ये फिल्म है और शाहरुख खान, दिव्या भारती इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुना जाए।

और ऐसा दीवानगनी और दीवानगनी किसका होता है, ऐसा दीवानगनी। और दोस्तों शाहरुख खान इस फिल्म में देविया भारती सिंह ने काम किया है, और अगर परदेसी के बाद जो हो जाए तो परदेसी से दिल लगाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं परदेशियों से अगर ये अखियाँ लड़ाना है तो ओमा कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन बुरी बात ये है कि अगर जब परदेसी को जाना पड़ेगा, जब अगर परदेसी को जाना पड़ेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम तो आ जाएगा ना यार राजा, कि अब तो सोचना है कि वो परदेसी कब आएगा, फिर से लौट कर वो कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक हम आपको कुछ परदेसी की बात बताते हैं कि परदेसी के गीत हम आपको सुनाते हैं।

और परदेसियों से अखियां मिलाने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन दिल थाम कर रखना, अगर जब परदेसियों को जाना है तो हर किसी को ये सब प्यार कहाँ होता है दोस्तों, सिर्फ नसीब वालों को होता है। श्रीदेवी फिरोज खान इस फिल्म में काम किया है, आ मिल के सुना जाए कि ये क्या है।

और हर किसी को कहाँ प्यार मिलता है इस जिंदगी में दोस्तों, सिर्फ नसीब वाला को, नसीब वालों को यानी कि सच्चा प्यार मिलता है हमारे यारों। और उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, वो कौन सा गीत है, हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, दिल लगाकर चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, मनहर उदास का ये गाया हुआ ये सॉन्ग।

और फिल्म कुर्बानी का निकाला हुआ ये सॉन्ग है जिसमें विनोद खन्ना सीने तमन ने काम किए है मन हर उदास का ये सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाए हैं बहुत मोहब्बत भरी प्यार भरी सॉन्ग है। इसके बाद हम और चलते हैं फिरोज खान हेमा मालिनी की ओर, आओ सुना जाए।

और तू जान हमारी हो, क्या खूब लगती हो, और बड़ी बड़ी चमकल लगती हो। ये एक लव स्टोरी जोन है, फिल्म के नाम है खलनायक पलकी में होके सवार चली रे अलका याग्निक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने काम किया है। आओ सुना जाए इस गीत को।

आओ शो मी दे ठुमका, शो मी दे ठुमका, तू झूठी मैं मक्कार। रणधीर का उसके बाद हम चलते हैं नौ

और सैया जब मुझे बुलाएंगे तो कैसे हम नहीं जाएंगे, मैंने भी रान रखी है, तू झूठी है, तू मक्कार है, रणबीर शारदा प्रीतम सीरिया बता रहे है देविया का अमिताभ के साथ।

0: और हमें यहाँ पर पानी पी रखी है। हमारे यारो क्या लोगो तुम, हम चलते गीत को जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया है।
1: रूम में रहे

और मेरे जिंदगी में आने को क्या लेंगे तुम। ये गीत गलत गाया गया है कि मेरे जिंदगी में जाने को क्या लोगे, और हकीकत में है उसको कहते हैं कि मेरे जिंदगी में आने को क्या लोगे। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों कि हमारा जिंदगी में आना है तो आपके फॉरवर्ड क्या है। फॉरवर्ड के बातचीत यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, तो आपको हम बता देना चाहते। तो इसके बाद हम जाते हैं चुनरिया के ओर, भैया बीबी नंबर 1 के ओर हम जाते हैं।

கிருச்சுனரியா உடுகையா அகருச்சுனரியா உடுகையா तो क्या देखने की मिलेगा आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। और चुनरिया के बाद हम चलते हैं। अच्छा सिला दिया है तूने मेरे प्यार के, जब कभी किसी ने किसी को प्यार में धोखा दिया है तो उस सब के लिए इस गीत को यहाँ से हम चलाते हैं। तो हम यही कहते हैं दोस्तों, दुनिया में धोखा तो कभी देना नहीं चाहिए, लेकिन जिस जिसको आप बहुत चाहते हैं, जिसके आप बहुत चाहते हैं खास करके, उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। सच्चाई से रहना, झूठ मत बोलना, उपकर्तमेंट से, और उसमें आपको जीत होगा। जिस दिन आप सच्चाई से सामना करने को तांगत रखेंगे, और उस दिन आप से जबर किसी नहीं होएंगे, कभी तुझसे जबर किसी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सच्चाई पे रहना और अपने चाहने वालों को कभी धोखा मत देना, यानी कि धोखा देना अच्छा बात नहीं है। कभी कभी दिल में इतना चोट लग जाता है कि उसको कुछ दवा और दारू उसको ठीक नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो फिर से प्यार ही ओके अच्छा कर सकता है दोस्तों। तो हम चलते हैं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का।

के जाने वाले जा छोड़ दिया तुझको, जिसका भरा हुआ जमीर हम उसको मारे।

और अच्छा सिला दिया है तूने और दिया है मेरे प्यार को। अगर जब किसी को धोखा देगे प्यार में दोस्तों, तो उसको ये गीत सुनना पड़ेगा। अगर धोखा दिया है तो ये गीत सुनना पड़ेगा। दार इस हेल मालखीन एक्सक्यूज फोर फोर दैट ये आश निमांत फोर द खेक हैव हाउद अपन धोखा ना देलो है तो कि उस पे आपको क्या डर है। चोरी करना डर है, चोरी ना करो किसका डर है। इसके बाद हम चलते हैं मिलने के तुम कोशिश जरूर करना। मिलने की कोशिश तुमको जरूर करना है। कुमार शानू आशा जी ये गीत को आप लोग को सुनाएंगे।

जहां टूट जाता है, लेकिन कोशिश करना हमारे यारों कि वादा ना टूटे, वादा टूटना नहीं चाहिए, और खास करके प्यार के वादा। उसके बाद हम चलते हैं झूमे जो पठान, और वो है शाहरुख खान। झूमे जो पठान, वो है शाहरुख खान और दीपिका।

कौन गीत हम चलाते हैं, अगर जो किसी के दीवाना हो गया है तो उस दीवानी के लिए ये गीत हम चलाते हैं, अगर जो किसी के ऊपर दीवाना हो गया है तो सब लॉफर्स के लिए ये गीत हम यहाँ से चलाते हैं।

और ऐसी दीवानगी किसको होता है, उसी को होता है जो दीवाना हो जाता है। तो उसी के लिए इस गीत है कि ऐसे दीवानगी देखी नहीं कहीं। और फिल्म के नाम है दीवाना, जिसमें शाहरुख खान, देविया भारती ने काम किए हैं। एंड बेस्ट मैन से वही खान दौर मत उनसे मोय प्रोग्रामा। और लठ लग गए है, जिसमें सैफ अली खान ने काम किए हैं।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हुआ तेरे वादा, दर भर गीत ब्रोकन हार सॉन्ग का प्रोग्राम।

डर भरा गीत का प्रोग्राम लगभग आधे घंटे तक रहेगा और पहला डर भरा सॉन्ग जो मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ आप सभी के लिए मैं पेश करूँगा, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया।

अगर अगर कोई आपसे नफरत करे, अगर कोई आपसे नफरत करे तो उसे दो वजह हो सकते हैं। पहला, आप में कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करता। पहला, आप में कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करता, या आप में कुछ ऐसा है जो उसमें नहीं।

देखिए लोग मोहब्बत किया करते हैं। ब्रोकन हार्ट सॉन्ग दरभर गीत का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। इसलिए जिंदगी में ऐसे लोगों को चुनो जिसका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। क्या बात है।

आज भी सुंदर भर गीत का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। इन दिनों में जो फिल्में बनते हैं उसमें बहुत कम दर्द भर गीत आते हैं। बीते हुए दिनों में लगभग हर एक फिल्मों में दर्द भरा गीत आते थे और लोग को बहुत पसंद था। आज तक लोग ये दर्द भरा गीत बहुत पसंद करते हैं। दिल टूटा है या नहीं, फिर भी ये दर्द भरा गीत से बहुत संबंध रखता है। एक आखिरी सॉन्ग चलेगा दर्द भरा गीत का प्रोग्राम में, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, किशोर दा।

हुआ तेरे वाला दर भर गिर ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। हर एक काम जो आपके रेडियो के सिरे कराना आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से न्यूज से ही फिर तक दृश्य फाइव टू ए फिर से ही फिर तार का नंबर है

मेरे सपने अब एक रंग है फिल्म गाइड का सॉन्ग अभी आप पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में सुन रहे थे। अब की बार दोस्तों ओ मेरे साहे खुबा जॉय मुखर्जी का फिल्म है लव इन टोक्यो, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में आप गीत को सुनेंगे। और इस फिल्म में जॉय मुखर्जी, आप जानते जितने फिल्में थे जॉय मुखर्जी का सभी हिट थे। जॉय मुखर्जी बहुत से ज़्यादा फिल्म नहीं बना, लगभग 40 या 50 फिल्मों, और उनका शरीर जो है बड़ा हो गया, इसी कारण वो फिल्म में नहीं आया। लेकिन जितने फिल्में वो बनाया सभी एक से एक फिल्म सभी हिट थे। फिल्म लव इन टोक्यो का सॉन्ग अभी आप सुनेंगे शंकर जय किशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

साहेब की आवाज में भी आप ये गीत सुन रहे थे, गजरा लगा के गजरा सजा के जइयो ना, फिल्म अपना जिसका सॉन्ग है। आप जानते हैं, आप फिल्म जो देखे होंगे, रेश खन्ना मुमताज इस फिल्म में काम किया, किशोरदा लता गीत है दोस्तों। आप जानते हैं इस फिल्म में कन्हैया लाल, प्रेम चोपड़ा, ये लोग बहुत फिस्ती रोल, बहुत फिस्ती खेला, निखतीफ रोल, बहुत अच्छी अदा से ये लोग अच्छी तरीका से अदा किया। और आप जानते हैं जब लोग फिस्ती खेल होते हैं तो लोग अपन लड़का के नाम नहीं रखते हैं, कोई कन्हैया लाल नहीं रखते हैं, कोई प्रेम चोपड़ा नहीं रखते हैं, कोई प्राण नहीं रखते हैं, कोई कायन सिंह नहीं रखते हैं। या कायन सिंह के नाम मैंने लिया तो मुझे याद हो गया दोस्तों, फिल्म अपनामा स्टूडियो में होता रहा तो कायन सिंह घर पर जा रहा था तो एक दोस्त स्टूडियो में का एक दोस्त कायन सिंह से कहा एक खत है रास्ते में मेरे बीबी को दे देना घर पर। तो कायन सिंह गया उस आदमी के घर पर, जब दरवाज़ा पर खटखटाया और वो आदमी का बीबी जो है जब दरवाज़ा खोला और कायन सिंह को देखा तो दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। तुरंत अपन आदमी को तार किया, कहा कि मेरे दरवाज़ा पर मेरे दरवाज़ा के सामने कायन सिंह खड़ा है। तो उसका पति ने कहा जी हाँ दरवाज़ा खोल लो, इसलिए कि मैं एक खत भेजा है उसी से। तो देखो क्या क्या नहीं होता, लोग कभी नहीं एक फिश्ती खेल का नाम अपन लड़का का देता है। और अभी जो कॉमेडियन एक्टर है उसका नाम अभी नहीं देता है, चार्ली कन्हैया लाल भी कभी कभी कॉमेडियन करता है। मुझे याद हो गया दोस्तों, जॉनी नंबर वन तो है, हम लोग के वीडियो में जो है जॉनी नंबर वन, वो आदमी वो नाम लेके, उसका असली नाम नहीं है लेकिन वो नाम लेके चलता है, तो वो शर्म नहीं करता, लोग शर्म करते हैं नाम लेके चलने को, लेकिन ये खुलासा ये नाम लेके चलता है। और जैसे है जॉनी विस्की, महमूद, जॉनी वालकर, मोहन छोटी, लोग अपन लड़का के नाम नहीं रखते हैं। फिर भी खुशी की बात है कि फाहोन हिस्सा रेडियो का जॉनी नंबर वन हमेशा तैयार रहता है और अपन प्रोग्राम हमेशा अच्छी तरह से पेश करता है। कजरा लगा के जइयो ना।

0: जरा लगा के जइयो ना। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर का एक रोमांटिक फिल्म है और इस रोमांटिक फिल्म में एक रोमांटिक सॉन्ग है दोस्तों। फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का सॉन्ग है, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। शर्मिला सेक्स बम, शर्मिला टैगोर एंड धर्मेंद्र दोनों का फिल्म।
1: चलो

तेरी आंखों के सिवा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वास्तव में दोस्तों ये आग जो है, जब प्यार होता है तो आग से शुरुआत होता है और जाकर दिल में ख़त्म होता है। जी हाँ, मान लीजिए कि आपको किसी से प्यार है तो ये प्यार वैसे नहीं हो जाता है, ये आग से शुरू होता है। आप देखते हैं उसको, वो आपको देखते हैं, पसंद होते हैं लोग आपन में, तो ये बात जाके दिल में फंस जाता है। और जब दिल में घुस जाता है तो कभी नहीं निकलता है, चाहे दिल टूट जाता है फिर भी उसका याद हमेशा रहता है। यकीन कीजिए,

सावन ही सारी पर आप चुन है और यहाँ सारम होता है क्या हो तेरे और दर भरे गिर भी रुकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम प्यार करे मुझसे प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से खुदा करे जिसे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से

जीवन जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराते ही रहिए।

क्या हुआ तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता किसी और है।

चलो तुम छोड़ दो मुझको, चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस जाता हूँ। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब किसी के लिए पराया हूँ। शायद शायद मेरे सखम सिल जाए, शायद मेरे सखम सिल जाए, तुमको नया साथी मिल जाए।

क्या हुआ तेरे और दर्द भर गीत ब्रुकन हाथ सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहन हिंसाइन पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है, जैसे खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 8 2 8 4 से 5 आपको तार करना है।

औरों का सफर के प्रोग्राम में आज कृष्णा कुमार कुन्नति यानी मशहूर गायक स्वर्गीय काका केके के बारे में बातचीत होगा। कृष्ण कुमार कुन्नत मिस्टर केके पैदा हुआ दीरेंद्रोदय ऑक्सीस निगरी अख्तन सेस्तक इंडिया का प्लेबैक सिंगर न सिर्फ हिंदी लेकिन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम मराठी बंगाल और गुजराती गाना पेश किया। इंडिया से पॉप रॉक म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक भी पेश किया। एक बेटा जिसका नाम कृष्णा और बेटी जिसका नाम है टमारा। मलेशिया से ऑर्डर्स माता पिता मलेशिया से थे और दिल्ली में बड़ा हुआ लगभग 3500 गाना केके ने गाया। जॉस ऑफ इंडिया जब क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रहा था निकटक में तो इंडिया का क्रिकेट टीम के लिए भी एक गीत पेश किया। बेटा कृष्णा ने गाया एक मस्ती एल्बम बनाया और बेटी तमारा ने पियानो पेश किया। किकी किशोर कुमार और एस डी बर्मन को गुरु की तरह जानता थे। किकी कहते थे कि एक गायक का चेहरा मत देखना, उसके चेहरे पर मत आना, उसके आवाज़ पर आना। सही बात है दोस्तों।

वैसे क्योंकि म्यूजिक और प्लानिंग कभी नहीं किया, सिर्फ स्टूडियो किया यानी फेरिस्ताइट दिल्ली का स्टूडियो में, यानी फेरिस्ताइट में स्टूडियो के बाद वो मार्केटिंग मैनेजर का काम किया होटल इंडस्ट्रीज में, नहीं फिर नहीं तक में मुंबई चला आया। उसी साल म्यूजिक टेप लुइस बांग को पेश किया और एक दो रोज़ के बाद यूटीफी ने उन्हें तार किया और एक जिंगल पेश किया अथवा तैंसी के लिए। चार साल के अंदर में 30,500 जिंगल्स कीकी ने बनाया। लेस्ट लिवर्स को अपन मेंटर की तरह जानते थे और आर बर्मन ने उन्हें बॉलीवुड में लाया। नीह में कीकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में गीत तरफ तरफ पेश किया। और वैसे तो फिल्म मिथुन का एक फिल्म था जिसमें कीकी ने भी एक गीत पेश किया, बीते लम्हे। हम सब मिलकर सुनेंगे कीकी के आवाज़ में बीते लम्हे।

लेजेंडिंग सेशन निघटक में सोनी म्यूजिक इंडिया का शुरुआत किया गया और किकी को सेलेक्टेड किया गया इसी म्यूजिक इंडिया में। किकी ने बनाया सोलो एल्बम पल, जिसमें गाने थे जैसे आपकी दुआ, यारो और पल। किकी को स्क्रीन अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद 8 साल किकी ने गीत नहीं गाया, म्यूजिक वर्ल्ड में भाग नहीं लिया। 8 साल के बाद 2008 में एक एल्बम पेश किया, एल्बम हमसफर। वैसे तो किकी ने एंगल्स, रॉक, बालात वगैरह वगैरह अपन जिंदगी में गाया दोस्तों। वैसे किकी भी टीवी सीरीज के लिए बहुत से गीत पेश किया और स्टार परिवार में भी गीत पेश किया। उन्हें 2003 में अवार्ड मिला श्रिया घोषाल के साथ। किकी ने टीवी पे जैसे मैंने कहा बहुत से गीत गाए, वैसे पाकिस्तान का टीवी पे भी शो पेश किया और एक मशहूर गाना था पाकिस्तान टीवी पर, तन्हा चला। वैसे सबरी ब्रदर्स के साथ भी कव्वाली पेश किया, चलता सूरज। बहुत से इंडिया से बाहर बहुत से कॉन्सर्ट भी दिया। वैसे किकी 2015 में टीवी रियलिटी इंडियन आइडल्स में भी भाग लिया। 13 सितंबर 2015 में सोनी मिक्स बातों बातों में किकी ने तमिल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, कनाडा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, मलयालम फिल्म अवार्ड का उन्हें मिला, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2003, 2006, 2008 और 2009 में किकी को मिला। सी साइन अवार्ड 2007 में, आईफा अवार्ड 2004, 2006, 2007, 2008 और 2009 में किकी को मिला। दुख की बात यह है दोस्तों कि एक कॉन्सर्ट कलकत्ता में, एक कॉन्सर्ट देने के बाद वो वापस घर आते थे और वही कलकत्ता में एक सीढ़ी पर से गिर पड़ा और तुरंत 63 साल के उम्र में। इन तक मई 2002 के बात है जब किकी का मृत्यु हो गया। किकी दुनिया में नहीं, लेकिन किकी के नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

टिक टिक मेरा दिल बोले जीतू जितेंद्र का समय रहा उन दिनों में दोस्तों, फिल्म हम जोली का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। वैसे जितेंद्र का पिता इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोना चांदी आप जाने ने नकली सोना चांदी का गहने बनाते थे। तो जीतू ने एक बार स्टूडियो में गया है गहना देने को, तो फिल्म डायरेक्टर ने जीतू को देखा, उससे बातचीत किया और कहा क्यों ना आप मेरे फिल्म में काम करने के चले आए। तो जीतू ने सोचा घर पर जाकर और पिता के साथ वो फिल्म मैनेजर के साथ पास गया और तुरंत उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में एक रोल मिला। उसके बाद टॉप एक्टर था अपन समय पे, यार सेफन शेस्तक तो निगरी सीफन तक डबले क्रेज खन्ना ने ही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। तो जितेंद्र एक टॉप एक्टर था। अब की बार राजेंद्र कुमार जो जुबली कैसे लोग कहते हैं जो जुबली अवार्ड विनर या जुबली कुमार के नाम से भी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। सहरा बानू के साथ फिल्म अमन में काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग राफी साहेब की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशअप द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशअप। चलिए मिलकर सुनते हैं

हरीश सुखदेव जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबका ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिलबा का ख्याल। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलियाँ भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीने बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेशा से बोल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: What's that smirk?
1: Where's what?
0: What's this here, so? Oh. Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had an emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेशा शिपोह की आवाज़ में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में केनेथ सालिक को सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

0: 2022 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: एक विशेष सूचना सुनने के लिए ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। आस्तांद दोनरदा 6 अगस्त को करीबन 11 बजे एक आओई खत के बारे में हम बातचीत करेंगे श्रीमान राम राम भारत सिंह से। आपको शायद याद होगा जो लोग निकदी फेफन से इफ्तक से पहले आए हैं उन्हें करीबन 25,000 से नवाजा गया है, लेकिन जो निकदी फेफन से इफ्तक के बाद आए हैं उन लोगों के बारे में श्रीमान राम राम भारत सिंह आप सबको बताएंगे जो इस वक्त आओवीर से। तो भूलना मत अपने हित प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से परिवार से कह देना कि दोस्तों को करीबन 11 बजे आओवी खत के बारे में बातचीत किया जाएगा श्रीमान राम राम भारत सिंह के साथ, और उन लोगों के लिए जो निकटीन फेफन से इफन तक के बाद आओवीर्स हुए हैं और होना आए हैं।
2: एक बहुत सा सुंदर गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते जॉय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ जी की आवाज़ में आपके आ जाने से।

अभी आप सुन रहे थे रायन मनोरथ और जॉयस शिवप्रसाद जी की आवाज़ में मैं से मीना से नशा ही से न पै माने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। सुनने वालों कल जबकि एक गीत निकला है और वो है रायन मनोरथ जी का, तो उन्होंने ये गीत गाए है, यानी एक मैशअप है आप सभी के वास्ते। और चलिए मिलके सुनते हैं। जी हाँ सुनने वालों, चलिए मिलकर सुनते हैं। इट्स विनोद लक्ष्मण, यानी विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। मैं प्यार का दीवाना।

अभी आप सुन रहे थे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे। ये सॉन्ग एक मैशअप जो है जो लाया गया है आप सभी के वास्ते रायन मनोरथ जी की आवाज़ में। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करते हैं सुनने वालों।

बहुत सुंदर सॉन्ग हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते वारिका राम सुकूल और धीरज लाला राम जी की आवाज़ में, मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरे सनम तेरा खत मिला, खत में तूने खत लिखने को लिखा। भी आप सुन रहे थे धीरज लाला राम और वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में। सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र, जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं।

जॉय शिव प्रसाद जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र। एक मैशअप हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में आप सुनेंगे।

वादिका राम सुकुल जी की आवाज में अभी आप ये मैशअप सुन रहे थे सुनने वालों। चलिए संदेश शिव दिन सुजल मुराओ नीलम माता दिन और सत्यम

सुनने वालों, अभी आप सुन रहे थे संदेश दिन सुजल उमराव नीलम माता दिन और सत्यम माता दिन की आवाज़ में ये सॉन्ग हमने पेश किए हैं। एक और मैशअप हो जाए वादिका रामसुकुल जी।

अभी आप सुन रहे थे वादिका जी की आवाज़ में ये मैशअप। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और प्रोग्राम में आ रहे हैं विशाल हीरा जी। भैया ताके लड़की तो क्या होता है, आप खुद सुन लीजिएगा।

विशाल हीरा जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे भैया ताके लड़की तो लड़की शर्म आए। शिवम राजाराम आ रहे हैं प्रोग्राम में।

शिवम राजा राम जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, ये सुंदर सा मैशो संदीप बदलू आ रहे हैं प्रोग्राम में और वो आपको क्या सुनाने वाले हैं। मुर्गी खोजे है टीता, चिकना खोजे है।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं। फिल्म में है राही बदल गई है, इसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश की और आप उम्मीद है सुने होंगे और अवश्य अच्छा लगा होगा। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और मैथिली मुकेश, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, और देखते हैं किशोर कुमार जी साथ हैं।

0: करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है।
1: दो जासूस करें महसूस, रफ़ी साहब और माइक मुकेश मिलके ये गीत गाए हैं। आपको पता है रफ़ी साहब मुकेश जी बहुत गाने नहीं गाए हैं, कुल मिलाकर जहाँ तक जोड़ा गया है, मिले हैं लोग को, मुझे भी मिला है, तो द्रियन त्रियन तक गाने हैं, उसमें से ये एक था। टोटल मिलकर यानी कुल मिलाकर द्रियन त्रियन तक गाने रफ़ी साहब और मुकेश जी साथ मिलकर गाए हैं, और उन द्रियन त्रियन तक में से यानी 23 में से ये एक था। दो जासूस करे महसूस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है देखते हैं, हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस ये गीत लेकर।

0: मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला मुकेश जी आपको सुनाइए मेरे प्यार में क्या वफा न थी। यहाँ क्या बात है, ये गीत सुनकर रफ़ी साहब ने कहा अगर प्यार की बात है, वफा की बात है और बेवफा की बात है तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं कि जवानी और दीवानी की बात कर रहा है। लीजिए रफ़ी साहब की आवाज़ में ये जवानी दीवानी की बात।
1: जवान तुम हो, जवान हम हैं।

शंकर जय किशन के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ जवान तुम हो जवान हम है, फिल्म दुनिया में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करते हैं और ये है, इसे चून अभी नहीं किए थे क्योंकि भी मुझे भी नहीं पता गीत कौन सा है। चलो मिलकर सुनते हैं, आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ।

ये कश्मीर है, ये कश्मीर है गीत के शब्दों से यही पता चलता है कि इसकी शूटिंग अवश्य हुई होगी कश्मीर में। बर्फीली यादों, बर्फीली पहाड़ों, गर्मी भी हो सकता है, पता नहीं। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे मैंने कहा, बर्फीली पहाड़ों में कश्मीर के ये शूट किया हुआ होगा। बहरहाल चलो कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश करते हैं ये गीत, क्या ख्याल है।

लेके हम आधा आधा लता जी और अपन की किशोर कुमार फिल्म आज़ाद में से निकाले हैं और हमने पेश किया, बस सिर्फ आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये रफ़ी साहब की, ये रफ़ी साहब का ये गीत है जिसमें लता जी भी साथ दी है और फिल्म है हंसते जख्म, इस तरह से।

फिल्म हंस दिस जख्म में से निकाले हैं लता जी और रफी साहब की आवाज में ये पेश किया गया, बस आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं और वो ये है, इस तरह से ये डुएट है उन्हीं कौमी के साथ पर।

यहाँ दिल ने फिर याद का किया निकतिन से सस्त खा ये फिल्म सोनी कोमी के साज पर हमने पेश की ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। क्या ख्याल है कर जमाया आपको ये सुनाऊं, वाह क्या बात है।

Shrita, Namaste She, Namaste She, Namaste She, Namo Namah. हरिओम। मैं खीदम भैया बीरबल के स्टाइल में। कैसे रह लो आप लोग साथियों, पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार, नमस्कार, और साथ ही साथ कबूल हो पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोग का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णादत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे इसरो तागनो आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम, यह हसीन प्रोग्राम संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम के लिंक में गीत और गजल ओत इस गोत लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ यारो। यही अश्वमेध लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। जहाँ पर भी हो, जिस साल में हो, घर में हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है। मैं ढेर फिर लयस्तर प्लेजर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेबलाइजर या इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में। दफ्तर का तार का नंबर है फन maandag tot vrijdag tijdens kantooruren kunt u op deze twee volgende nummers bellen. Kantoor 070-365-2247 of Studio Qatar kan nummer 070-362-2077. Quality grant your service ke saath found in Dushtani Radio. Ye kaam aap logo ke liye bechaini se karne ke liye intezaar mein rehte hai saathiyo, aur niet te vergeten hai, onze kwaliteit is altijd uw garantie en natuurlijk voelt u zich altijd lekkerder bij Fahon Hindustani Radio, toch? हमसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुना जो खास करके हम लोगों का बड़ा भाई और फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो का कराओक टीम का लीडर डॉन एंड ओनली मास्टर चंद्र सेन गंगा जी के द्वारा आप सुन रहे थे। अश्वमेध है कि भाई गंगा जी का पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से भाई गंगा जी, और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ रात्रि। आपके घर पे एक खुशी का दिन मनाया जा रहा है, एक जश्न मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिल कर मना रहे हैं, हो सकता है कि आप विवाह संस्कार के तैयारियां में भी लगे हो। जो भी खुशी के दिन, जश्न के दिन आप सभी मना रहे हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से है आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। ऊपर वाले से हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आपके सभी नेक मनोकामनाएं, नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो, गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है, और ऊपर वाले से हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है उनके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं, और यही अश्वमेध है कि आप जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए, और जिंदगी का मजे रोजाना लेते रहना बंधु, और हो सके तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना, और थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना। फन हार्ट बेहतर खाब, कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, और हो सकता है कि आप कल या आज कामयाब नहीं हुए हो, परसों भी, तो
चिंता के कोई बात नहीं है बंधु, मोर्ख वीरंदाख है, कोशिश जारी रखना, दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा और सेल्फ ट्रोव थोड़ा और जोर तोर से बढ़ाते रहना, तो हो सकता है कि कामयाबी भी जल्द से जल्द आपके कदमों को भी दौड़ दौड़ कर आकर चूम सकते हैं ना। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी बंधु, रथ वो तो खिलेट है घरे स्कूल पे कमुआ पे उफराओ नेफर गिफ ब्रारा नंगा सीसा सोशल वीडियो भी अंत ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बदांग्स फॉर हेड लाइस्टर। इसमें प्रवेश हुए तो हमारे फुल टीम की तरफ से सुस्वागतम, फैन फकंसी खनित फनंस लंच एंड नेचुरली ब्लाइव लाइस्टर नार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो यो। ik ga het zeker leuk vinden en dat meen ik ook hoor. और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को भी एक शुभ यात्रा, फेन वकांसी नतुरलिक हेफ्ट इधर ही नोडिग और मुझे सेकर दून। और लोगों का कहना है कि ओपन हुन वकांसी अदरेस है बस ओक नार ओंस गेलुइस्टर्ड फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तेस मोखलक इंटरनेट के लहर द्वारा। तो आप भी सुनिए हम लोगों को op uw vakantieadres tijdens het leuke vakantie van u in internet door op uw tablet, smartphone of laptop. Het is allemaal mogelijk. Fijne vakantie! प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ एंड फिल्म ललकार रिकॉर्डिंग टू ए सीखता कंपोज ब्राइड ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा ना, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं और सदा कहते रहेंगे, या फिल्म एफ नहीं सो लेकर दट भी यूडी मिस के नाल aan mijn stem gehoord, een beetje verkouden keelpijn en ja, vooral af en toe een kriebel hoesje. Lekin, koi baat nahi, aa gaya hoon aap sabhi ke khidmat karne ke liye. To hamesha ki tarah Rafi saab ji aap sabhi ko sunane wala hai ki aaj galo muskuralo mehfile sajalo, kya jaane kal koi saathi chhoot jayega, jeevan ke door to badi kamzor hai yaro, ये कब टूट जाएगा या कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना। इसलिए तो हम लोग आप सभी से कहते हैं ना, एप्टी नाश्ता होते लीफ कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है साथियों, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो इस इच्छा उस से भरा हुआ बयान के साथ आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम संगीतकार का नाश्ता नामक कार्यक्रम gelinkt met Old is Gold Geet or Gazel. Een paar mooie oude nummers, ook een paar non-released nummers. En deze nummers heb ik geselecteerd toen ik ook naar andere nummers zocht. Gotaina, abgele, sukru khojete milge, aur sejara sukru honing milge. Je bi hotai. Dan heb ik een selectie gemaakt van meer dan 200 nummers en daarmee ben ik al een tijdje bezig. Beach me kuch gyan ke baate hai, sher shairi bhi hai. To kul milakar hamara aur aapka saath takriban 10:30 baje raatri tak chalega yaro. Ik heb het best wel moeilijk af en toe, ja, een kriebelhoesje, maar geef niet, dat hoort er allemaal bij. Ik ben er. To zaru program ko sunte rehna, maze lete rehna. Rafi saab hamesha ki tarah program ka shuruaat.

गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत और ये भी रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज के साथ। साथियों, आज का इस हसीन रात्रि का प्रोग्राम जो बहुत ही मधुर है, स्टूडियो में आते वक्त जब मैं तापमान को देख रहा था ना, तो तापमान 43 और 24 ग्राड के दरमियान था और धूप भी निकला है, तो मौसम तो भी बहुत ही मधुर है ऐसे ऐसे नगमे को सुनने के लिए। तो एक फिल्म जो रिलीज किया गया था 1985 तक, बड़े भैया, और इस फिल्म में ये अति सुंदर बयान को गाया है उस जमाने के महान गायक श्री जी एम दुरानी जी, और साथ दे रही है शमशाद बेगम जी। लेखक मनोहर खन्ना है और म्यूजिक डायरेक्टर प्रेमनाथ के संगीत है। मिल के सुनते हैं अति सुंदर बयान।

सुंदर बयान श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया। फिल्म बड़े भैया निकली फेफ तक, संगीतकार प्रेमनाथ के साज, मनोहर खन्ना के अल्फाजे और आवाजें था उस जमाने के मशहूर गाने वाला द ग्रेट जीएम दुरानी साथ दे रही थी। नाइटिंगेल उस जमाने का मैं तन अपर्त स्टेम शमशाद बेगम जी। 17 मिनट गुजर गया है 8 बजकर साथियों, और आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम फेफ ऑगस्ट 20 सेशन 20 का ये रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। कुछ पुराने नगमे फ्रॉम द मूवी नया अंदाज 1975 तक में से निकाला हुआ है। 30 सुंदर बयान आप सभी को सुनाने वाला है संगीतकारों और संगीत प्रेमियों का महान चाहने वाला सिंगर और हसीनों का पुजारी को लाते हैं प्रोग्राम में। किशोर दा बहुत ही कम काम किए हैं ओपन एयर जी के साथ, लेकिन कुछ गाने जरूर है। फारफान एंच एन हेले लेक ख्रापक नेमर कि दिल के हाल ब्रोकन हार्ट सॉन्ग अपने ही अंदाज में मजे में सुनाने वाला और कोई नहीं हो सकता। ओनली किशोर दा मिलके सुनते जबरदस्त सॉन्ग कंपोज बाय मैस्ट्रो ओंकार प्रसाद नेर। ओ

A great composing by Maestro O.P. Nergy uit de film Naya Andaz 1956. Jan Nazar Akhtar ke alfaze aur O.P. Nergy ke saaj Haseeno ka Pujari Kishore Da ke beautiful awaaz mein aur aakhri mein aap sun rahe the kitna uncha le gaya tha that kon hai O.K.O.R. Heel hoog singer. पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है 8 मिनट बाकी है 8:30 बजने में साथियों. अगला बयान एक और पुराना सॉन्ग है आई द फिल्म दो दुन्नी चार आइट 1969 और इस बार महान संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर द ग्रेट दादा हेमंत कुमार के साथ पर सुनाने वाला है आप सभी को एक बार फिर संगीतकारों का बादशाह और सहिंशा द वन एंड ओनली हसीनो का पुजारी किशोर दा ऑप्शन बेस्ट साम में दादा हेमंत कुमार गुलजार जी के अल्फाजे जरा अल्फाजे पे जरूर ध्यान देना है. वतन कंपोजिंग बाय दादा हेमंत कुमार.

A masterpiece of composing by Dada Hemant Kumar uit de film Do Dhoni Char 1969. Erkjal Fazita, Mahan Lekhak, The Great Gulzar Ji Ka. Aur Kishor Da to aap sun rahe the. All that of some best. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, घड़ी की तरफ देखता हूँ साथियों, तो 3 मिनट बाकी है 8:30 बजने में। एक रेयर अनयूज्ड फिल्म सॉन्ग आप सुनिए कुछ कहानी के साथ, जो इंट्रो में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर सुरेश ओबेरॉय जी की आवाज है, और इस गाने के जो कहानी है मैं नैया तू है मेरे माझी, उनके बारे में आप खुद ही सुनिए। अरे भजन, अरे हाँ,

5 साल की मुसलसल खामोशी के बाद गोयल सिने कॉरपोरेशन आज अपनी नई फिल्म रिश्ता कागज का की रिलीज के मौके पर अपने सुनने वालों की खिदमत में एक हसीन दिलनशीन तोहफा पेश कर रहे हैं। बरसों पहले एक लहकते महकते गीत का जन्म हुआ था जिसे स्वर्गीय देवेंद्र गोयल ने खुद अपनी निगरानी में रिकॉर्ड करवाया था, मगर हालात की हवाओं ने उसे सुनने वालों तक पहुंचने नहीं दिया और वो गीत गुमनामी के अंधेरों में ही भटकता रहा। फिर वक्त ने करवट ली, हवाओं ने रुख बदला और अब वही यादगार गीत पर्दे के जरिए न सही इस रिकॉर्ड के जरिए सुनने वालों तक पहुंच रहा है। इस गीत के संगीतकार हैं रवि, रचनाकार हैं प्रेम धवन और आवाज का जादू जगाया है हेमंत कुमार ने।

great composing by Dada Hemant Kumar. Aur awaz thi Queen of Melody Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji ke. Hai the film Kohla. सोलह मिनट बाकी है साथियों, आठ बजने में, तो अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और एक बार फिर लाते हैं वही महान फनकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, राइटर, द वन एंड ओनली दादा हेमंत कुमार जी, एट द फिल्म बीरज बहू 1984. मेरा मन भूला भूला का है डोले मेरे।

0: प्रभु बिन कौन संभले, जीवन की ये तुम कैसे नैया कर दे राम हवाले।
1: अति सुंदर बयान मेरे मन भूला भूला काहे डोले। सलील चौधरी जी के बनाया हुआ है अति सुंदर मीठा धुन। खसखरी खुदोर प्रिंस धवन और आवाज था दादा हेमंत कुमार जी का। एक और जबरदस्त सॉन्ग है एक फिल्म दूर का राही खसखरीफ एंड geregistreerd ook door Kishore Da en संगीत भी दिया है किशोर दा इस फिल्म में। चलती चली जाए जिंदगी की डगर दर हेमंत कुमार के आवाज में, अल्फाज है शैलेंद्र जी की और संगीत है किशोर दा।

पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। एक मिनट गुजर चुका है 9:00। तो हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एंड नैचुरली वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सो लव यू एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नैचुरली बेडंट फॉर हेड लिस्टरन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश, जरूरी खबरें इस तिहारे देंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। फाइट सिस्टम आम सर्विस ग्रंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, इश्तिहारे हो, जरूरी खबरें हो या तो खास फरमाइश से हो, आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप कहेंगे बंधु उतनी ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी कि फाइट सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यार। आप आजमा कर तो दे सभी जानकारी टेलीफोन मांडा टू फ्रेडा टेनिस कंटोर यूरो ऑफ द फोल्ड टेलीफोन नंबर्स कंटोर 070-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 070-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना देंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इवेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो बिनती गुजारिश निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एंड वी हैव ओकन्स एक कराओक टीम एंड द दिन वो ऑल बैन आर में यार आओ। वी हैव लिंक्स एंड रेक्स ऑल ऑपरेटर दिस फॉलो onze omroepers, social media's, dan City of Horty heel snel gauw waar wij voor u live gaan zingen. Dan bent u ook natuurlijk van harte welkom. Aur kuch na kuch behind the screen hoor, ha hey. Dus volg ons social media, de zroetje, wanneer wij voor u op de podium gaan staan, hè. इसी तरह हम लोगों के बारे में जरूर चर्चा करते रहना, रिक्लाम करते रहना। और अगर आप लेट हो जाए ना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का, तो आपको तो ढेर सारे फायदा फायदा ही फायदा है। तो आप भी आकर इस छोटा सा मोटा सा जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का जो पलवार बन चुका है, बनते जा रहा है, आप भी आकर उसमें शामिल हो सकते हैं। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें tijdens kantooruren van maandag tot vrijdag en bellen op 070-365-2247. Dan wordt u automatisch doorverbonden naar ons teamleider, the one and the only, maestro Johnny number one. Waar je hem ook aan member bent, ook ook op hier beneden. U bent van harte welkom hoor. Denk eraan, hè, zo zo lobby lobby bij Fahon Hindustani Radio. Toh, wada ke mutabik ek hi dam badhte hai program ki taraf. Aur dekha jaye to bite hue hafte hum log pahunch chuke the film Jugnoo tak. Ji haan dosto, ab aap sirf nagme sunenge jin movies mein mahan abhineta, the great actor Dharmendra the Hitman ne kaam kiya hai. Aur hum log pahunch chuke hain film Jugnoo tak, jo release kiya gaya tha 1973 mein. Aur is film mein

à faire un tour, comme tu vois, des tribalous. Maya. Alors, il se filme, mais. Dharmendra Jinekam, qui a. Met zijn tweede vrouw natuurlijk. Malkai Husne, de great Hema. Malini, beauty queen, dream girl, kesaar. Mahan Sangeetkar Sachin Dilbar Manji ke Sangeet hai. Aur sabhi gaane likha hai. Us zamane ke mahan lekhak the great Anand Bakshi. Aur kuch actors is film mein kaam kiye hain. The great Pran Mehmood ji. Aur Lalita Paul Aruna Irani ji ke. Aur kuch aur kalakare. To kabhi fursat mile to ye movie zarur aap dekhiye. Jugnoo सभी नगमे सुपरहिट साबित हुए तो कुछ नगमे रह गया है सुनाने को एक धर चुका हूं प्लेयर में आप सभी के खिदमत में और लाते हैं एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सरस्वती मां स्विंग एस डी के साथ और आनंद बख्शी के अल्फाजे क्या पिला दिया है तूने मुझको

संग किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं आंखों में।

किशोर दास रिफ कर सकता है भाई, कल्याण जी आमिन जी द ब्रदर्स के साथ पर आई डू फिल्म ब्लैक मेल 1973। दो मिनट बाकी है साथियों, 9:30 बजने में यासो हर्ट कानत खान है। अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी ब्लैक मेल 1973 कल्याण जी आनंद जी के साथ पर, और इस बार राजेंद्र कृष्ण के अल्फाजे, एक मोई डुएट गसोंग डोर किशोर दा एंड लता जी, मिले मिले दो बदन।

साथियों वक्त हो गया है ना, धीरे धीरे 5 मिनट गुजर चुका है, 9:30, तो कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी ने कि लम्हा लम्हा सांसें खत्म हो रही है, जिंदगी मौत के पहलू में सो रही है, उस बेवफा से ना पूछो मेरी मौत की वजह, उस बेवफा से ना पूछो मेरी मौत की वजह, वो तो जमाने को दिखाने के लिए रो रही है। ये भी होता है। एक कहानी सी दिल पर लिखी रह गई, एक कहानी सी दिल पर लिखी रह गई, वो नजर जो मुझे देखती रह गई, लोग आकर बाजार में बिक भी गए, लोग आकर बाजार में बिक भी गए, मेरी कीमत लगी की लगी रह गई। अनजाने में दिल गवां बैठे, इस प्यार में कैसे धोखा खा बैठे, उनसे क्या गिला करें, उनसे मैं क्या गिला करें, भूल तो हमारी थी जो बिना दिल वालों से दिल लगा बैठे। ये भी होता है यारो। छोड़ तो दिया मुझे पर ये सोचा है कभी तुमने, छोड़ तो दिया मुझे पर ये सोचा है कभी तुमने, अब जब भी झूठ बोलोगी तू कसम किसकी खाओगी। हर रोज कोई ख्वाब टूट जाता है, हर रोज कोई अपना रूठ जाता है, ना जाने मेरी किस्मत में क्या है, जिसे मैं याद करूं वही मुझे भूल जाता है। तो ये था कुछ शेयर्स। आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को। प्रोग्राम को बढ़ाते हैं साथियों एक अति सुंदर आंसुओं और दिल को झकझोरने वाला सॉन्ग आप सुनिए, इस बार लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में, कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और अल्फाजे है राजेंद्र कृष्ण जी का, जरा उन पे ध्यान दीजिए लायरिक्स पर।

आशा ओ आशा, तुझे क्या हुआ? uit de film Blackmail 1973, Bharat Ratna Queen of Melody, La Tajike Beautiful Avance mee, gecomponeerd door de broeders Kalyanji Anandji. 18 minuten baki hai, saatjo 10 bachne mee, aur aap chun hai, Fahun Hindustani Radio par, budhwar 5 augustus 2026 ka ye, रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं. संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम खलिंग में गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड. और हम पहुंच चुके हैं फिल्म जो ब्लैकमेल, हाँ ब्लैकमेल जो रिलीज किया गया था 1973. एक आखिरी बयान उस फिल्म से आप सुनिए. ओ नैना मेरे रंग भरे, कह रही है आप सभी से एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी कल्याण जी आनंद जी के साथ पर.

Beautiful song in there. Duk oude, derde oude gushi. Ik hisa te pish karna. Kya khubi se sajaya ye dono bhaiyon ne ye ati sundar bayan ko. Aur Lata ji ne apne andaaz mein aap sabhi ko sunaya. Aur dekha jaye to सभी नगमे फिल्म ब्लैकमेल का मैं आप सभी को सुना चुका हूं और आगे बढ़ते हैं तो देखा एक और देखा जाए ना तो एक और जबरदस्त मूवी रिलीज किया गया था N83 में फिल्म लोफर और इस जबरदस्त मूवी में धर्मेंद्र जी ने काम किया है क्या बात है द ब्यूटी क्वीन मलकाय हुस्न द ग्रेट मुमताज जी के साथ कॉमेडियन एक्टर ओम प्रकाश भी इस फिल्म में काम किया है और फेलियन रोल यानी फिस्टी रोल जिसे हम लोग बोलते हैं ना फेलियन रोल अदा किया है प्रेमनाथ और कायन सिंह जी ने मिलकर इस फिल्म में महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ है एक बार फिर गाने लिखे हैं श्री आनंद बख्शी जी ने तो ये जो मैं आप सभी को सुनाने को जा रहा हूँ ये सुपरहिट सॉन्ग है फिल्म लोफर का जो बहुत ही पसंद किए लोगों ने यार सही तक में और मैं फिल्मों में शोज में कितने बार गाए जाते हैं अभी तक रफी साहब जी का ये सुपर हिट सॉन्ग आप सुनिए आज मौसम बड़ा बेईमान है अपने ही अंदाज में सुनिए आप और एंजॉय कीजिए इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इट्स अ ग्रेट सॉन्ग और क्या धुन है जो ये महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने बनाए हैं एंड The word, the scene and combinatie van alles maakt dit geheel een onvergetelijk song aller tijden.

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

found Hindustani radio ka budhwar ka ratri ka program aap sun rahe hai. Dikha jaye to 5 August ho gaya hai, so snel gaat het al. 28ste maand van het jaar, hè, 5e dag. To dosto hamare full team ki taraf se aap sultan ko ek bar phir swagat hum karyakram mein. हम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में. एंड नेचुरली वर्क से बॉयज एंड गर्ल्स ससुर लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू. एंड नेचुरली बदंत फॉर हेट लॉयस्टर. एक मिनट गुजरने वाला है 10:00. तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इश्तिहारे देंकान फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो. सभी जानकारी बेल फन मांडक टॉट फ्रेडक ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स 07-365-2247. कंटोर का नंबर है और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077. जो भी रेडियो का काम होना, देंकान फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, यू बेंट फन हार्ट वेलकम. इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लामे बनाते रहना यार. और फॉरऑल अस यू अलमा लुक फिंड एंड द होप वाइट मिस्टर, दैन मूट यू इट ओक लेकर डोर वर्टेल ऑन यू बुरमान फैमिली फ्रेंड कोलेगास. हम लोग यही चाहते कि जैसे आप सभी सदियों से हम लोगों को सुन सुन कर मजे ले रहे हैं, आपके रिश्तेदार हीटी प्रेमी कोलेगन भी और बिर मनवा भी बिर फ्रावा भी बोलिए कि तूफान सुने हैं. और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी हैं ना. पेंटिनो लेट फन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेम्बर बने और रो को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है. We hebben ook momenteel ons eigen karaoke team, waar heel veel omroeper en omroepsters meedoen. Volg onze social media's, dan hoort u of ziet u zeker waar wij binnenkort voor u gaan optreden. Dan bent u ook natuurlijk van harte welkom. Tobi Abhiakar is chota sa mota sa जो फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बन चुका है और बनते जा रहा है, आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए. सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपनो 7-3-5-6-2-2-7-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-
one and only Maestro Johnny number one. Remember, आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप ही का हैप्पी हैप्पी स्टेशन फ्रॉम दी हेग सिटी डेन हाग शहर हॉलैंड. एक कदम लेकर चलते हैं कुछ नगमे रह गया है सुनाने को आप सभी को. एक फिल्म लोफर जो रिलीज किया गया था 1973 में. अगला बयान मैं तेरे इश्क में सुनने को जा रही है आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी.

అతి సుందర భయాన మైత్రే ఇష్క్ మే ఐదు ఫిలిం లోఫర్ 1973 లక్ష్మీకాంత్ ప్యారే లాల్ కే సాచ్ పర్ అనంత్ బక్షీ కే అల్ఫాజే ఔర్ లతా జీ ఆప్షన్ బెస్ట్ 9 మినిట్ व्यतीत हो चुका है साथियों, 10 बजकर अगला बयान एक ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग है और इस बार लाते हैं द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल म्यूजिक फ्रॉम द इंडियन पॉप म्यूजिक बॉलीवुड का आशा भोसले जी, और वो सुनाती है ये बिल्कुल रोमांटिक सॉन्ग की मोतियों की लड़की हूं मैं, बाप रे बाप, दीरी मांग मोतियों यानी डायमंड की लड़की हूं मैं।

Beautiful song, just like a small cabaret song uit de film Lover, composed by Lakshmikant Pyarelal or Asha Bhosle ji ki awaaz, Anand Bakshi ki awaaz. 14 मिनट गुजर चुका है साथियों, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर सॉन्ग एक बार फिर आशा भोसले जी के आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, कहाँ है वो

Beautiful Song, apa cerita ni? Sunyi ada filem Lover. Aur ni kaya itu lakshinkan ke pyar lal ke sajanan bakshi ke alfaze. Aur great Asha ji ke beautiful awaz picturized by Kevade dancer Fariel us zamane ke bahut hi mashhoor Kevade dancer thi aur kafi filmon mein kaam ki thi. Saathiyo 11 minute baki hai 10:30 bajne mein to waqt bhi dheere dheere kareeb aa rahe hain to kuch aakhri shairs ho jaye na aaj ke mere hisse ke karyakram mein. ये नहीं गम के कसम अपनी भुलाए तुमने गम, ये नहीं गम के कसम अपनी भुलाए तुमने गम, थे ये है कि रकीबों से निभाई तुमने कोई. क्या बात है, अगर तुमको मुझसे कहते, अगर तुमको तो मुझसे कहते बात आपस की क्यों, सब

उसने तोड़ा वो तालुक जो हमारी हर बात से था, उसको दुख ना जाने मेरी किस बात से था, सिर्फ तालुक रहा लोगों की तरह वो भी जो अच्छी तरह वाकिफ मेरी हर बात से था। दिल लगी थी उसे हमसे मोहब्बत कब थी, दिल लगी थी उससे हमसे मोहब्बत कब थी, महफिले गैर से उनको फुर्सत कब थी, हम थे मोहब्बत में लुट जाने के काबिल, उसके वादों में वो हकीकत कभी नहीं थी। आखिरी शेर साथियों, पल पल उसका साथ निभाते हम एक इशारा।

अरे पे दुनिया छोड़ जाते हम। समंदर के बीच में पहुंचकर फरेब किया उसने, समंदर के बीच में पहुंचकर तब वो फरेब किया मुझसे, उसने वो कहते तो किनारे पे ही डूब जाते हम। था कुछ आखिरी शेर साथियों, अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म लोफर 1937 तक, और इस बार आशा भोसले जी की आवाज में आप सुनिए ये अति सुंदर बयान, कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कोई शहरी बाबू।

क्या बात है, जबरदस्त सॉन्ग आप श्रोताओ ने सुन रहे थे एड फिल्म लोफर 1973 आइकॉनिक हिंदी सॉन्ग आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज और अल्फाज था श्री आनंद बख्शी जी का। 3 मिनट रह गया है 10:30 बजने में साथियों, तो धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। यही तक था आज का मेरे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। यही आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ साथियों की जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया मैं शोर एंड हुस्न द स्टेम आप सभी को खिदमत करने के, ये आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूँ सरनामी संगीत लेकर। पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और तीसरा अध्याय में कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। मुझे आप सभी इजाजत दे, कुछ साथियों से आप जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना और खास करके 11 से 12 बजे तक आप सुनेंगे एक हरहालिंग फन फमिरख प्रेजेंटेड न्यूज फन ओंस एयरवाड डोर ओंस एयरवाड ब्रूडर और हम लोग खबर का भैया जर्नलिस्ट एंड कॉरेस्पोंडेंट फन फा हुन हिंदुस्तानी रेडियो द वन एंड ओनली मैस्ट्रो रोमियो होस्ट। तो मुझे आप सभी इजाजत दे और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ न कुछ गुनगुना देता हूँ और आज है कुछ दरा हेमंत कुमार के याद में।

I love you all from the bottom of my heart. Aur agar zindagi kudrat ne saath diya to aane wale रविवार शाम 5 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा आपसे वी के खिदमत में. सो सोलो बिलो बियॉन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अ डिलीट बदंत फॉर हेथ लाइस्टरन. बाय बाय.

और अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और हमारा प्रोग्राम पुराने नंबरों की बहार प्रोग्राम यहाँ से चलते हैं और अपना पुराने गाने की ओर हम बढ़ते हैं और चलते फिल्म अनमोल की ओर देखती नीखने शस्त्र का भीगा बदन और भीगा बदन और मेरा चंदन की तरह महकते हैं फिल्म अनमोल मोती का ये गाना दोस्तों आओ मिलकर हम सुना जाए।

और क्या दोस्तों, इस गाना बहुत पुराना गाना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और ये छोटी सी मुलाकात जो है, और ये विजयंती माला उत्तम कुमार का ये गाना है, और ये पुराना गाना हम आपके लिए यहाँ से चलाते हैं।

और छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई। और प्यार में क्या क्या हो जाता भैया, छोटी से ही मुलाकात में प्यार हो जाए और बड़े मुलाकात में मार हो जाते हैं, होता है ना। और हम प्यार का सौदा कर बैठे विजयंती माला और लता मंगेशकर फिल्म जिंदगी, जिंदगी का ये गाना है नेहा तिन होंदत और फिरन शस्तक का, जिसमें राजेंद्र कुमार राजकुमार विजयंती माला जीवन महमूद हेलेन ने और इसमें काम किया है हमारे दोस्तों।

हम प्यार के सौदा करते हैं। और एक बार दोस्तों और प्रकाश और ये गाना है ओ राधा तेरी बिना, और ये मस्त भरी गाना है फिल्म राधा का सनम, गोविंदा जुही चावला ने इसमें काम किया है। और आओ मिलके इस गाना को आज हम सुना जाए, ये इसमें कौन सा मजा है दोस्तों।

से अपना यही है। ओ राधा तेरे बिना क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों और ये गाना जो हम आपके लिए अब चलाते हैं ये भी एक बहुत पुराना गाना है, कोई प्यार की देखे जादूगरी। ये भी एक फिल्म है जो अभी हमारा पैदाइश नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन जितनी पुराना ही गाना है उतने मजा उसमें है। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे लिस्टनर्स, आओ मिलके और सुना जाए ये क्या है।

कोई प्यार के देखे और जादू भरी दोस्तों। और आगे को बढ़ते हैं कि हैं, और दोस्तों ये गाना जो अब हम चलाए जाते हैं ये भी एक पुराना ही गाना है, आई मेरे जिंदगी तू प्यार का सपना, फिल्म के नाम है नेकति होंद नेक ने शस्तक का लता जी इस गाना को गाया है। इस फिल्म में काम किया है विश्वाजीत और मालहान सिन्हा ने दोस्तों, और को अशोक कुमार भी इसमें काम किया है, जॉनी भी काम किया है ना हम जॉनी वॉलकर दोस्तों, हेलेन काम किया है, और इसमें कितने लोग काम किया है, आओ मिलके सुना जाए ये कौन सा गाना है दोस्तों।

और खो गया जाने कहाँ जो है, ये एक पुराना गाना है दोस्तों, आओ मिलकर और सुना जाए इसमें क्या है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों।

अखंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो वाहन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8 फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

जी हाँ, आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप सबको हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

गीता राय जी और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत हमने पेश की और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और गीत हमने निकाले हैं निकली फेहें फेफ तक से ओपन एयर के साज पर और पेश किए ये शानदार गीत। आपको एक बात बता दूं, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। उस समय मैं 7 साल का था, जिंदगी में पहली बार ये फिल्म हमने देखे हैं थिएटर में। वैसे तो रे करे 80 साल में देखे हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गए हैं थिएटर लुक्सोर में गए ये फिल्म को देखने। बहुत अच्छा लगा था थिएटर में बैठ के, एक कुर्सी पर अच्छा लगा था। वैसे तो बांगी पर बैठ कर देखते थे। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म सुनहरा संसार में से निकाले हैं नेकदी फैफन सैफन तक नौशाद अली के साज पर। और लता जी

लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म सुनहरा संसार में से निकाल कर 1975 का ये गीत नौशाद अली के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, शाम का वक्त है तो लीजिए इस तरह से।

ये फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं निगेटिन ट्विन शस्त्र और ओपेन नैयर के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, जब आप भी हैं और मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है।

यारन कैसे हो मुकेश जी और लता जी, मिलके आपको सुनाए मदन मोहन के साज पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो है क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। महेंद्र कपूर जी, फिल्म का नाम है सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन, फिल्म का नाम है निगेतिन तुई शस्त्र से हम निकाले हैं। इस तरह से हम आपको सुनाते हैं।

मेरी दुनिया है मेरी, महेंद्र कपूर जी और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। और फिल्म लिखती तू ऐसे कहा देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन के साज फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में से निकाल कर हमने पेश किए कल्याण जी आनंद जी के साज पर ये गीत था। चलिए अगला गीत है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, बस आप भी हैं मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर आपको ये सुनाऊँ इस तरह से। अच्छा जी और रफी

इजाज़त हो तो सुना दूँ। ये गीत चला ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, आशा जी और रफ़ी जी ने आपको मिलके सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस क्या ख्याल है।

एवरग्रीन, जी नहीं एवरग्रीन नहीं, लेकिन द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत साहब ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है, ये गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिर भी मैं चला रहा हूँ फिल्म अनुपमा में से निकाल कर नेक तीन सस्त और हेमंत कुमार के साज है लता जी हैं।

0: गाओ।
1: चलो मुँह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाना है।
0: अभी तो बहुत वक्त है, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है

दिले बेकरार फिल्म अनुपमा में से निकाले हैं हेमंत कुमार के साथ पर लता जी ने पेश की। और निगेटिव सेंसेस का ये फिल्म 1966 का ये फिल्म है। चलिए जहाँ आप भी हैं मैं भी हूँ तो आपको हम क्या सुनाते हैं। ये गीत हमने चुन की है लेकिन हमने सुना नहीं, किशोर कुमार जी आपको सुना रहा है। फिल्म है देखते हैं संसार में से निकालते हैं चित्रगुप्त के साज पर। क्या ख्याल है एवरग्रीन किशोर कुमार?

हाथों में किताब, बालों में गुलाब, जबरदस्ती की प्यार, हम आपको सुनाए हैं ये चटपटा चुटकुला गीत। एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं वो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर ये आपको किसी से प्यार है और आप उनके आँखों की तारीफ़ करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि उनके आँखों की तारीफ़ कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, रवि साहब सुनाता है आपको इस तरह से। मदन मोहन के चाहसाज पर फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निघ्न शस्त्र 1969 का ये गीत।

तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा किया है। रफ़ी साहब की आवाज़ में लता जी भी साथी और हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। ये बंदा जैसे रफ़ी साहब कभी शराब नहीं पीता था, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है किशोर कुमार जी भी शराब नहीं पीता था, लेकिन मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल वो भी शराब नहीं पीता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाए हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म कटे पतंग में से हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए। ओ परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जी हाँ, फिल्म कटी पतंग में से निकाल कर। चलिए, माइत मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, इस तरह से।

वाह क्या बात है लता जी, और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म झूला में से निकाल कर, ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर वाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ और आप मैं चला रहा हूँ आप सुन रहे हैं आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। गीत रखे हैं तो चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं, प्लेन में जो रखा हुआ है आपका जाना पहचाना गीत है इस तरह से।

बाहों में तेरे मस्ती के घेरे ये गीत सुनाया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर जब आप चुने। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं। जी हाँ, फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं, ये गीत हम आपको सुनाते हैं। चलो सुनते इस तरह से।

घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, ये शानदार गीत चला शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। फिल्म कलंक में से निकाले हैं और गाने वाले थे श्रिया घोषाल और वैशाली प्रीतम के साथ पर ये पेश किया गया। चलिए अगला गीत हम सुनाने वाले हैं आपको और वो ये है।

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहेब और लता जी फिल्म अकेली मत जाइयो निगती इंद्रियों से अस्तख में से निकाल कर हम आपको सुनाए शानदार फिल्म। चलिए वे पिन चैनल पर आप चुने जो लोग चुनकी मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

हम बनाएंगे एक आशियां, ये गीत आपको सुनाया गया। लेकिन गलती हमने कहा क्योंकि नंबर बदला हुआ था ना, फिल्म काला पत्थर का नहीं है, लेकिन ये है आरती मुखर्जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए, ये दो पंछी दो तीन के फिल्म तपस्या में से निकाले हैं, क्योंकि नंबर गलत था इसीलिए हमने पढ़ा नहीं लेकिन कह दिया, क्षमा करना, और फिल्म तपस्या में से निकाले हैं। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है, इस तरह से है।

साथियाँ नहीं जाना कि जी ना लगे, ये शानदार गीत चला और ये दुआ चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम रहे रख प्लेयर में रखे, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। चांद ग्रहण में से निकाले हैं जयदेव के साथ।

0: ओ दिल समझा नहीं है, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल कर जयदेव के साज पर, और इसका म्यूजिक नेकतीन सेफन नेकन तक में निकला। तो आप सोच रहे होंगे नेकतीन सेफन नेकन तक, जबकि मुकेश जी के स्वर्गवास हो चुका था नेकतीन ससन सेफन तक में। बात यह है ये फिल्म बना, रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लड़ाई से ये गीत निकला नहीं, फिल्म भी नहीं निकला। तो बाद में जाकर सोनी म्यूजिक ने इस गीत को निकाला, और पता नहीं ये फिल्म निकला या नहीं। बहरहाल नेकतीन सेफन नेकन तक में जाकर ये गीत निकाला गया सोनी म्यूजिक के जरिए। चलिए अगला बयान हम आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है, और वो है ये भी माइट मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।
1: तेरा प्यार
0: असल में ये एक फरमाइश का गीत है, लेकिन कभी नहीं चलता, इसलिए हम आपको सुनाते हैं।

0: तेरा प्यार से जीवन भर जाए, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, इसलिए पेश की क्योंकि ये गीत नहीं चलता है और ये आशीर्वाद के तौर पर ये गीत को चलाया जाता है शादी विवाह में। हमने चला दी, शायद आप कभी फरमाइश दोगे और बेटी की शादी है तो इसके बारे में चर्चा करना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो वाले अवश्य जानते हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम और आपको ये सुनाते, बस वाह क्या बात है।
1: Never miss an update.

न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। लता जी आपको सुनाए हैं फिल्म दर्द में से निकाले हैं निगहतिन इन तख्त का ये रोमांटिक सॉन्ग, ये प्यार भरा गीत हम आपको सुनाए हैं फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुने जो लोग चुन के हैं आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको ये क्या सुना रहे हैं, वह क्या बात है। मुकेश और कंचन फिल्म धर्मात्मा में से

तुमने किसी से कभी प्यार किया है कंचन और मैथी मुकेश नीक दिन फाइव सही में तो धर्मात्मा में से निकाल कर ये शानदार गीत पेश किया गया फोर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो तो लीजिए इस तरह से लगातार प्रेम कहानियां ये सुनाती हैं।

अपनी प्रेम कहानियां लता जी आपको सुनाएं, फिल्म मेरा गांव मेरा देश, फिल्म मेरा गांव मेरा देश से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आओ ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप जो चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत किया जा रहा। तो अगर आई लव यू की बात हुई तो चलिए हम आपको सुनाते हैं मैथ मुकेश जी क्या कह रहा है इस तरह से।

गा दीवाने झूम के मैथ मुकेश की आवाज में आपको सुनाया गया ये गीत। तो चलिए ये बदली हुई गीत हम रखते हैं। हाँ

कश्मीर है, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

सदियों पुरानी अपनी कहानी और रफ़ी साहब और आयशा जी आपको सुनाए रवि के साथ पर फिल्म शहनाई में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए। चलिए अगर नंबर प्लेयर में ये गीत रखें, इस तरह से सुनते हैं।

दिल से दिल की डोर बांधे ये शानदार गीत चला ऊपर पाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इस तरह से आ रहा है आपकी मांगी हुई गीत।

रफ़ी साहब का ये गीत है चांद की अंगड़ाई। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

मैं आशिक हूँ बहारों का मैं तो मुकेश, मुकेश जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप भी हैं, आप सुन रहे हैं ओ मैं दनाख मिस्त्री में बैठकर चला रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए ये गीत लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन के गाना बहुत कम चलता है। अपने हुए पराये में से निकली फिर सस्त लता जी और सुबीर सेन जी।

लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन मिलकर ये दोनों ये द्वैत आपको सुनाए हैं। फिल्म अपने हुए पराए में से निकाल कर हमने चलाए हैं निगती फिर सस्त का ये गीत है शंकर जय किशन के साज पर। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं कि प्यार में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि डफली वाला भी बन जाते हैं लोग।

डफली वाले डफली बजा, ये गीत सुनाया गया। हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और ऐसे आ रहा है, हाँ इस तरह से है।

फिल्म भीगी रात में से निकाले हैं निकिती फैफन सस्तिक के ये गीत है रोशन के साथ पर रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हमने पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो है मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है

अभी हम मुझसे भी खफा रहना, माइक टू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। चलिए ये गीत तो सुनाए बिना हम आपको नहीं जाएंगे।

महेंद्र कपूर जी और लता जी मिल के आपको सुनाए हैं। ये प्यारा गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म घर बसा के देखो में से हमने निकाल कर ये चलाए हैं।

कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनाए हैं। तो अगला गीत है ये फिल्म गाई तो आपने अवश्य देखे होंगे, एस डी बर्मन के साज है और लता जी की आवाज़ में ये सेमी क्लासिकल सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

पिया तुसे नैना लागे रे लता जी की आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनाए हैं एस डी बर्मन के साज पर और था फिल्म गायद में से निकाल कर। तो लीजिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, बस आपकी जानी पहचानी गीत है। जी हाँ, एक बार फिल्म आदमी में से निकाले हैं लता जी की आवाज़ में।

फिल्म आदमी में से नौशाद अली के साज पर लता जी की आवाज में हमने पेश की कारी बदरिया, और लता जी के बाद हम पेश करते हैं एक बार फिर आशा जी को, और आशा जी कह रही है चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो चलो सुनते हैं और जानते हैं कि चेहरे पे कितनी खुशी आती है।